0: official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
2: Omar Khwaja.
4: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
6: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
7: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
6: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
8: Chicken. Banana. Chicken. Banana?
9: Bro, banana nahi. Banana. Matlab, make the chicken right.
7: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
10: Inefficient man.
11: Very complex.
12: Clumsy way.
11: Are confusion hi confusion hai. Abhe!
13: Disjointed software को यूज करना इतना इजी नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे सॉफ्टवेयर से छुटकारा पाओ. अपने बिजनेस के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेकर customer support, accounting, operations या HR. कामन एक, सॉफ्टवेयर एक. Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
14: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
15: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
14: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
15: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
14: ये क्या होता?
15: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
7: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
16: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
17: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
16: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया. कैसे मैनेज होगा सब?
17: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
4: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
18: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಡ್ಯಾಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಇಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಕ 9th May and 10th May. ಸ್ಥಳ ಹಯಾತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಫ್ರಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾಲಸ್. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಾತ್ರಿ 8 ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
19: अभी बजा आएगा ना भिड़ो.
20: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका.

दोस्तों यारो, मैं हूँ पारो। कैसे हैं आप लोग? और बहुत अच्छा लग रहा था, मैं काफ़ी टाइम बड़ा आराम से, मतलब यूजुअली क्या होता है, थोड़ा भागते भागते, क्योंकि वेन वी आर चेंजिंग शिफ्ट राइट आरजे की, तो पहले आरजे वो ख़त्म कर रहे होते हैं, मैं स्टार्ट कर रही होती हूँ, तो बात नहीं होती है। आज थोड़ी इत्मीनान से मारविन जी से बात करी, एंड आई रियली लाइक्ड, क्योंकि एक ज़माना था जब हम लोग मॉर्निंग शो करते थे और उसके बाद इवनिंग शो भी साथ करते थे, तो मारविन जी के साथ थोड़ा सा पुरानी दोस्ती है और एक पार्टनरशिप है। एक चीज़ होती है, अगर आपने किसी के साथ काम किया है, किसी के साथ आप स्कूल कॉलेज गए हो, सो यू हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग, जो अगर बहुत साल भी हो जाएं तो वो चलती रहती है, एंड दैट दोज मेमोरीज आर देयर, एंड स्पेशली इफ यू हैड अ गुड टाइम एंड यू नो दोज मेमोरीज आर देयर एंड यू फील लाइक यू हैव अ कनेक्शन। तो ये हर एक जगह होता है। देयर आर लॉट ऑफ दिस डिस्कशन समटाइम्स आई हैव विद माय कॉलेज फ्रेंड्स एज वेल। लास्ट कल ही मैंने एक्चुअली बड़ी काफी यहां से शो खत्म करके अपनी एक पुरानी दोस्त से बात करी थी, और बात तो हमें 5 मिनट की करनी थी, लेकिन पता नहीं कैसे 45 मिनट्स हो गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। कोई गाना सुनना चाहते हैं? ट्यूसडे नहीं है, बिल्कुल जी वेंसडे हो गया है। मैं शायद ट्यूसडे पे अटकी हुई हूँ, तो बिल्कुल वेंसडे हो गया, मिडल ऑफ द वीक। 9722355555 पर गाना कर सकते हैं रिक्वेस्ट, अगर आप कोई भी जो इवनिंग के हिसाब से गाना हो वो कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं।

टुडे इज May 6th. बहुत अच्छा वेदर है, मतलब थोड़ा सा ठंड है आई थिंक मेरे हिसाब से. Somebody was saying this morning to me कि कितना अच्छा प्लेजेंट सा वेदर है, और मुझे इस प्लेजेंट वेदर में बहुत सर्दी लगती है क्योंकि काफी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा ठंडा है. बट इट इज डेफिनेटली आई थिंक अभी जैसे जैसे दिन ढल रहा है, सुबह थोड़ा शायद ज्यादा ठंड थी, अभी थोड़ा और प्लेजेंट होता जा रहा है. सो या इट इज नाइस टू बी आउटसाइड. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड से दैट. शायद मे बी किसी को छोटी मोटी जैकेट पहननी पड़े, लेकिन इट इज अ गुड डे. एंड आज इस गुड डे में हम क्या अच्छा काम करने जा रहे हैं वो बताऊंगी मैं आप लोगों को. आज हमारी थीम क्या है May 6th की, एंड वी आर गोना टॉक अबाउट इट इन अ लिटिल बिट, यानी कि 7:30. लेकिन उसके पहले मैं एक और अच्छी बात आपको बता देती हूँ. ये जिंदगी जो हमारी भागते भागते कटती है, इसको थामने का, रोकने का एक प्लेजेंट सा रिट्रीट होने वाली है, एक प्लेजेंट सी रिट्रीट जिसको आप अटेंड कर सकते हैं. एंड दैट विल मेक यू वाइंड डाउन कह सकते हैं, या एक जैसे चाबी होती है ना, वो एक चाबी वाला टॉय होता था, हम बचपन में बहुत खेलते थे, मुझे बड़ा मजा आता था. कि ये बैटरी वाले तो बाद में आए हैं और मैं तो चाबियों वाले, चाबी वाला बंदर, चाबी वाला कुत्ता, उनके साथ खेल खेल के बड़ी हुई हूँ. बट आई स्टिल लाइक देम. और अभी भी मैं कभी कभी वो चाबी वाले जो होते हैं ना, वाइंडिंग टॉयज जिनको बोलते हैं, मैं उनको खरीद लेती हूँ. तो पीछे उनके चाबी लगी होती है, तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये इंसानों के पीछे भी अगर चाबी लगी हो तो कितना अच्छा है. एंड द अदर थिंग आई लाइक इज दैट उसमें आप थोड़ा सा भरते रहते हैं, यू नो, मतलब चाबी तो जैसे जैसे आप उसको ज्यादा उसको एनर्जी मिलती है, जितनी ज्यादा आप चाबी भरते हो उतना देर तक चलता है. सो आई रियली लाइक दैट आइडिया. और ऐसा ही मुझे लगता है कि इस तरह की जो चाबी है, शायद इनविजिबल चाबी है हमारे पीछे, शायद पता नहीं है हमें तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ये जो चाबी है हमें कभी कभी बीच में भरवानी पड़ती है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं, और उसके लिए इस तरह की रिट्रीट्स की बहुत जरूरत है. सो दिस इज ओशो यूनिवर्सल रिट्रीट. इट इज हैपनिंग ऑन May 14th to May 17th. स्टेप इन टू अ 3-day इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रिकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस्ड फैसिलिटेटर्स. क्योंकि कभी कभी, यस, कभी कभी द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ इज स्लो डाउन. तेजी से अगर भाग रहे हैं तो स्लो डाउन कर लीजिए, जिंदगी में भी और गाड़ी को भी थोड़ा सा स्लो डाउन कर लीजिए. अगर आप ड्राइव कर रहे हैं बहुत तेजी से, वैसे नहीं चलाना चाहिए, सेफ्टी की बात कर रही हूँ. हाउ कैन यू डू अटेंड दिस इज दिस इवेंट इज बाय रजिस्टरिंग एट ओशो यूनिवर्सल. सो इट्स OSHO यूनिवर्सल, तो एक ही वर्ड है, ओशो यूनिवर्सल टुगेदर, oshoyuniversal.org. और अगर कोई गाना सुनना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 972-355-5555. कोई बात शेयर करना चाहते हैं और अगर हमारी थीम का इंतजार करना चाहते हैं तो जरूर करिए 7:30 के बाद. विल टॉक अबाउट दैट.

ये गंदी बात वाला गाना बड़ा अच्छा है. आई मीन इट्स सच अ फन डांस नंबर, और इसमें डांस भी बड़ा अच्छा है. दोनों ही बहुत अच्छा करें, सोनाक्षी एंड शाहिद कपूर साहब इज अ वेरी गुड डांसर, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन ये मुझे चीज़ पसंद नहीं है कि ये सिर्फ बार बार बोले जा रहे हैं गंदी बात, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं अच्छी बातें करने में. अच्छी बातें करते हैं और अच्छी बातें हमें सुननी अच्छी लगती है, अच्छे गाने हमें सुनने अच्छे लगते हैं. बट आई रियली लाइक द सॉन्ग फॉर इट्स एनर्जी, और एनर्जी तो चाहिए क्योंकि वेंसडे इवनिंग है, और वेंसडे इवनिंग को तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि हमने आधा हफ्ता कर लिया है पूरा और आधा है अभी बाकी. तो वी नीड टू सेलिब्रेट. मुझे ऐसा लगता है हर वेंसडे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए भाई, क्योंकि वी हैव अचीव्ड सो मच. यस, वी हैव अ लॉट मोर टू अचीव, बट आधा तो अचीव कर लिया है, तो उसको तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि एक आप हाथ अपने अपने अपने कंधे पर ही थपथपा दीजिए, अपने आप को कंग्रेचुलेशंस बोल दीजिए. अब क्या अचीव किया है ये सब बातों में नहीं पड़ते, कुछ तो अचीव किया ही है और कुछ नहीं तो दो तीन दिन जी अच्छे से जिए हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स. और गानों की मेरे पास बड़ी सारी रिक्वेस्ट आ गई है. एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, सुबह जी आपकी मुझे गाने की रिक्वेस्ट बहुत प्यारी लगी, और लेकिन गाना भी मुझे ऐसा याद आया थोड़ा थोड़ा जब आपने बताया, मुझे लगा बड़ा प्यारा रोमांटिक सा गाना है, पर फिर जब मैंने सुना इस गाने को, जब आपने रिक्वेस्ट किया, मैं थोड़ा सा सुनती हूँ जस्ट टू सी इट फिट्स द मूड, तो बहुत ही स्लो गाना है. इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग बट इट्स वेरी वेरी स्लो. वेंसडे शाम को हम रोमांटिक गाने चला सकते हैं, लेकिन इतने स्लो नहीं चला सकते क्योंकि इस वक्त 7:20 है, बहुत सारे लोग थक कर लौट रहे हैं घर. अगर ये गाना सुनते सुनते नींद आ गई तो गलती तो पारो की होगी. तो हम चाहते हैं कि लोग और ज्यादा एनर्जी से घर जाएं, क्योंकि घर जाके भी काम तो कुछ कुछ करना ही है, लॉन्ड्री होती है, ये होता है, कुछ कुछ काम रहते ही है घर में. सो वी वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू आर ऑल रेडी फॉर रेस्ट ऑफ द इवनिंग. तो इसलिए चूंकि आपने कमीने पिक्चर का गाना कहा था, देखिए ये भी कैसा नाम है, मतलब क्या क्या. लेकिन इट इज अ वेरी फन फिल्म, तो मैंने इसका एक बहुत फन गाना लगाया है जो मुझे लगता है कि इससे बड़ी ऐसी एनर्जी आने वाली है, धन तना धन. ऐसी एनर्जी आने वाली है.

कोई छोटा मोटा चोर उचक्का लगता है सब। पैसे, रिवॉल्वर सब छोड़ के भाग गया डर के मारे। कुछ चीज मिसिंग है साहब।

टैन ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है गाना, और आई वॉच डिफरेंट रेंडिशंस ऑफ इट, बहुत मस्त है. कनेक्टिंग अमेरिका के बारे में बताना चाहती हूँ आपको. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय कनेक्टिंग अमेरिका. विद कनेक्टिंग अमेरिका यू कैन टर्न योर बिजनेस एक्सपेंसेस इनटू अ पावरफुल इनकम स्ट्रीम थ्रू अ यूनिक इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रेटजी डिजाइन टू बूस्ट योर बॉटम लाइन. और यहीं पर नहीं खत्म होती है इनकी कहानी. दे ऑल्सो हेल्प होम ओनर्स पे ऑफ देयर मॉर्गेज इन 10 ईयर्स और लेस. सो इंतजार मत करिए, आप जेम्स साहब को कॉल कर सकते हैं 3218887345, or you can visit their website, which is connectingamericafinancials.com, and start turning your daily expenses into income. Connecting America is the place where smart business owners turn costs into cash. Aur ye bhi batana chahti hu ki if you're driving and you are not able to note this down, kai baar hota hai. In fact, kal hi hua tha mere paas ek listener ka call aaya ki aap kuch keh rahe the us waqt, lekin I couldn't write down the details kyunki I was driving, and a lot of listeners are listening to us when they are driving and their obviously focus should be on the car and the road. लेकिन अगर ऐसा है कि आप थोड़ा थोड़ा भी हमें जैसे बैकग्राउंड में चलता रहता है, अगर हमें थोड़ा भी सुना और आपको ऐसा लगा कि कुछ चीज पारो ने कही है लेकिन आप नहीं रजिस्टर कर पाए या नहीं आप लिख पाए, नो प्रॉब्लम, कॉल कर लीजिए. मैं फिर से आपको बता दूंगी 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. एंड आई वुड लव टू टेल यू देयर समथिंग दैट यू मिस्ड, कोई काम की बात अगर कोई है तो आप जरूर मुझे कॉल कर सकते हैं. और थोड़ी देर बाद हमारी जो थीम की है वो बात करेंगे. आज एक ऐसा दिन है जो मुझे बहुत पसंद है. वैसे आप सोचेंगे मैं हर रोज यही कहती हूँ कि आज ऐसा दिन है जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज का दिन खाली मुझे ही नहीं पसंद है. आज जो हम सेलिब्रेट करने जाने वाले हैं, मुझे लगता है वो सबको बहुत पसंद आने वाला है. बिकॉज दिस इज अ डे दैट एवरीबडी, maybe not everybody, but I would say at least 80-90% of the people would love to celebrate every single day. लेकिन दुख की बात है कि ये दिन सिर्फ एक ही दिन मनाया जाता है दुनिया में, and that is May 6th. लेकिन अच्छी बात ये है that today is May 6th. पारो इन द हाउस, सफी आपके लिए ये गाना.

0: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
1: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
0: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
2: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं। रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
3: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338। The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
4: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है, पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर। एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर।
2: द फ्लेवर लाउंज, वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस।
4: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज, अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर।
2: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल।
5: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
6: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
5: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit indianattirefrisco.com.
7: मुझे अपनी प्राइवेसी का कोई चिंता नहीं बाबा।
8: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिसे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। कॉमन एक, सॉफ्टवेयर एक। Zoho One, get your free trial at zoho.com/one।
9: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897. और विजिट astrologerishwar.com।
10: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
11: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
10: K2 ड्राइव मतलब
11: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
10: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
11: 100%
12: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2 ड्राइव.com और कॉल 214-814-0402। Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
13: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
14: Excuse me. It's called being loyal.
13: It's called being predictable.
14: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
13: And what's so special at Neon Cactus?
14: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
13: Not bad.
14: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
13: Okay, this I didn't expect from you.
14: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
15: Attention store owners, Rabi's summer kickoff is back June 3rd and 4th from 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. They are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts throughout the day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Team Rabi's, just bigger, older and be more fun. Rabi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.

वेलकम बैक वेलकम बैक दोस्तों यारों, मैं हूँ पारू, रहूंगी आप लोगों के साथ 9 बजे तक। 7 बजे से चल रही है हमारी गाड़ी और मेरे पास काफी सारी अच्छी रिक्वेस्ट हैं लाइंड अप, सो आई विल बी प्लेइंग देम। लेकिन मैं अपनी थीम की भी बात करना चाहती हूँ। हम 7:30 बजे हम करते हैं ये बात कि आज का दिन है क्या खास। आज के दिन को अभी भी है वक्त हमारे पास, हम कर सकते हैं सेलिब्रेट, नमन या सल्यूट। और आज का दिन खाली सैल्यूट करना खाली दिन को नहीं, बट ऑल्सो टू द नर्सेज। नर्सेज, अगर आप कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, कभी आप रहे हैं हॉस्पिटल में, काम किया है, या आप कोई खुद एक नर्स हैं, तो यू नो द काइंड ऑफ डेडिकेशन एंड द वर्क दैट इज रिक्वायर्ड टू बी अ नर्स, टू बिकम अ नर्स, टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स। बहुत मेहनत करती हैं नर्सेज और आज का दिन इज द स्टार्ट ऑफ द नर्सेज वीक। आज से शुरू होता है, पूरे हफ्ते सेलिब्रेट किया जाता है, बट आज का दिन शुरू किया जाता है। सो दिस इज अ डे वन नर्सेज आर सेलिब्रेटेड। एक हफ्ते तक करते हैं सेलिब्रेट, बट आज का दिन से शुरुआत होती है, तो आई वॉन्ट टू मैंशन दैट। लेकिन जो आज हम सेलिब्रेट करेंगे वो इससे थोड़ा सा अलग है। यस, वी डू ऑलवेज सेलिब्रेट, एंड इफ यू आर अ नर्स और यू हैव सम फैमिली मेंबर हु इज अ नर्स, प्लीज कॉल अस एंड यू कैन डेडिकेट अ सॉन्ग टू देम, व्हाई नॉट। एंड आज नहीं, मैं जैसे कह रही हूँ ना, पूरा हफ्ता है ये, मतलब आज से शुरू होता है और अगले एक हफ्ते तक चलता है। सो यू कैन डू दैट एनी डे रेस्ट ऑफ द वीक। इनफैक्ट यू शुड डू, इफ यू हैव समबडी हु इज अ नर्स एंड यू शुड डेफिनेटली रिमेंबर देम, डेडिकेट टू देम एंड यू नो थैंक देम पर्सनली एज वेल। खाली गाना ही नहीं रिक्वेस्ट करिए, पर्सनली कॉल करके थैंक यू भी बोल दीजिए। लेकिन आज की जो थीम है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसकी करूंगी मैं बात अभी। ये गाना सुनते हैं, बहुत सारे गाने की, प्यारी प्यारी गानों की मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई है। और जैसे कि विवेक कुमार साहब, आपकी मैंने पहले भी शायद बोला है, इस बार शायद नहीं बोला जब आपने कॉल किया, बट बोला है मैंने आपको, मुझे ऐसा लगता है पहले कि आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, तो कभी रेडियो शेडियो में ट्राई किया क्या? तो बिकॉज योर वॉइस इज डेफिनेटली समथिंग दैट आई कैन फील दैट यू नो इट हैज दैट स्ट्रेंथ टू होल्ड यू नो रेडियो पे, या इस तरह से मीडिया में आप बात कर सकते हैं, शायद करते ही हो सकता है आप। पर ये दूसरी चीज मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगी, वो ये कि आपने मेरी पसंद का गाना रिक्वेस्ट किया। सो ये विवेक साहब के लिए।

ईशान खत्तर साहब इज द स्टेप ब्रदर ऑफ शाहिद कपूर और एक पंकज कपूर साहब के बेटे हैं. मदर दोनों की सेम है. पंकज कपूर साहब के बेटे हैं शाहिद कपूर और फादर अलग अलग हैं. ये इनके फादर ईशान खत्तर साहब के फादर हैं राजेश खत्तर. राजेश खत्तर एक्चुअली आई ऑल्सो डोंट नो मच अबाउट विद द नेम. मैंने नहीं पहचाना लेकिन इफ यू लुक एट हिज पिक्चर यू विल रिकॉग्नाइज हिम क्योंकि बहुत सारी फिल्मों में वो आ चुके हैं एज अ साइड एक्टर बनके एंड ही इज अ प्रीटी गुड एक्टर एज वेल. काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं. लेकिन मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है कि इवन दो इनके फादर दोनों के अलग हैं दोनों इतना अच्छा और काफी सिमिलर सा डांस करते हैं. तो मुझे लगता है ये मदर से आया होगा डेफिनेटली. और इनकी जो मदर हैं वो काफी पहले फेमस हुई थी टीवी शो से एंड सो दैट नीलिमा अजीम जो है इनकी दोनों की जो मदर है नीलिमा अजीम पंकज कपूर साहब फिर उसके बाद ये आज राजेश खत्तर साहब से उनकी शादी हुई एंड शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस और एक बड़ा फेमस सीरियल आया करता था बहुत पुराना दूरदर्शन पे फिर वही तलाश. इट वॉज वेरी फेमस. आई थिंक शीशा दिनिंग का पहला ही सीरियल था टीवी सीरियल. उसके बाद बहुत सारे टीवी सीरीज में उन्होंने और फिल्मों में भी एज अ साइड एक्टर बहुत सारे काम किया है बॉलीवुड में. राइटिंग भी करती हैं. शी हैज वर्क्ड एज अ राइटर एज वेल. क्लासिकल डांसर हैं तो ये तो जवाब मिल ही गया. क्लासिकल डांसर है तो डेफिनेटली दोनों बच्चों को उन्होंने डांस वाले जीन्स दिए हैं अपने. एंड विद दैट लेट्स मूव टू द अदर सॉन्ग. अगला गाना अमीना जी ने करा है रिक्वेस्ट. थोड़ा सा सॉफ्ट गाना है लेकिन दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग. एनिमल का है ये गाना. लेट्स लिसन टू दिस वन. अमीना जी आपके लिए.

आज का दिन है क्या खास? आज का दिन ये खास है कि जो आपका मन करे वो खाइए। अगर अभी तक नहीं खाया, अभी तक डाइट कर रहे थे और अभी तक अगर आपने कंट्रोल करके रखा है और समोसे हलवा पूड़ी नहीं खाया है तो अभी खा लीजिए, क्योंकि आज के दिन को संपन्न करना बहुत ज़रूरी है, आज के दिन को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, ये पारो कह रही है। May 6th is एक्चुअली इंटरनेशनल नो डाइट डे। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मनाया जाता है एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली, हर साल मनाया जाता है। मतलब आज आप जितना आपका मन है, जो मन है, मतलब भर भर के कैलोरी वाला खाना खा लीजिए, कल से लेकिन डाइटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जो दिन है ना, ये साल में एक ही बार आता है, तो अभी कुछ घंटे हैं आपके पास इस दिन को जीने के लिए पूरी तरह। एंड दिस डे इज एक्चुअली टू प्रमोट बॉडी पॉजिटिविटी, सेलिब्रेट बॉडी डाइवर्सिटी एंड रेज अवेयरनेस अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ रिस्ट्रिक्टिव डाइटिंग। देखिए, डाइटिंग या ये बहुत इस तरह का लोग करते हैं, एंड इट्स अ गुड थिंग एज वेल कि यू आर अवेयर एंड यू आर यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड यू वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू स्टे हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ एंड अ हेल्दी हैप्पी लाइफ। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर जरूरी हैं, मगर देखिए, खाना भी तो सेलिब्रेट करना चाहिए। अब वो समोसों को कौन सेलिब्रेट करेगा, वो कचौड़ियों को कौन सेलिब्रेट करेगा, और वो इतने सारे भर भर के जो डेजर्ट्स होते हैं हमारे, तो मतलब हलवाई की दुकान पे हम बहुत जाते हैं। दिल्ली में हमारे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, कुमार हलवाई। वो बाहर एकदम देसी घी में जलेबियां बना रहा होता है। अभी भी मेरा मन कर रहा है कि मैं वहां उड़ के चली जाऊं दिल्ली में और वो कुमार की जलेबी खाऊं। आज तक मैंने वो जलेबी नहीं खाई, मतलब देसी घी में एकदम फ्रेश बनाता है आपके लिए। आपको वेट करना पड़ेगा शायद 5 मिनट, लेकिन फ्रेश बना के देते हैं। और वहीं पर पनीर के पकौड़े, वाह वाह, और बहुत ही एकदम तला हुआ ऐसा बढ़िया वाला खाना। सो यस, दिस इज अ डे टू सेलिब्रेट फूड एंड टू सेलिब्रेट रियली आर आई थिंक इट्स, मुझे तो लगता है सेलिब्रेट लाइफ एंड लिविंग, क्योंकि जब हम अच्छा खाते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम शीशे में अगर ना देखें अपने आप को खाने के बाद और अगर हम अगले दिन सुबह सुबह जो वेइंग मशीन है उस पर ना चढ़ें, तो मुझे लगता है हम बड़े खुश भी रहते हैं। राइट, नेक्स्ट सॉन्ग। और मैंने रियलाइज किया, देखिए मेरी हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम है, सो आई एम वेरी वेरी सॉरी टू सुमना, क्योंकि सुमना ने करा था ये गाना जो अभी चला है रिक्वेस्ट। अगला गाना अमीना ने करा है, तो अगला गाना अमीना आपके लिए।

खाने की बात हो रही है तो देसी मंडी की बात बता दूं आपको. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय देसी मंडी, द बिगेस्ट साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर इन टाउन. देसी मंडी हैज अमेजिंग ऑफर्स, क्रेविंग मोर फॉर लेस दिस वीक हैज यू कवर्ड. मंडे और वेंसडे को बाय वन गेट वन फ्री ऑन बिरयानी नूडल्स एंड फ्राइड राइस, ट्यूजडेज एंड थर्सडेज को बाय वन गेट वन फ्री ऑन डोसास एंड चाट्स, और वीकडेज को यानी कि हर वीकडेज को होता है ये 5 PM to 9 PM. सो यस, मंडे एंड वेंसडे, ट्यूजडे एंड थर्सडे. तो आज वेंसडे है, आज बिरयानी नूडल्स या फ्राइड राइस में क्या खाइएगा? नो मिक्स एंड मैच, टीएनसी सप्लाई, मोर फ्लेवर मोर सेविंग्स ऑल वीक लॉन्ग. देसी मंडी कहां पर है ये? ये है लुइसविल में, टेक्सस में. हम सब हैं टेक्सस में, और टेक्सस में खाना बड़ा अच्छा मिलता है. मुझे तो टेक्सस इसलिए भी ज्यादा पसंद है क्योंकि खाना अच्छा मिलता है, बड़े बड़े पोर्शन मिलते हैं. और आज हम कर रहे हैं खाने की बात, बिकॉज टुडे ऑन May 6th वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल नो डाइट डे. मतलब डाइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, खाने पे ध्यान दीजिए. क्या पसंद है, क्या खाना चाहते हैं, दैट इज वॉट शुड मैटर ऑन दिस डे. अगर चाट खाने का मन है तो यस, अगर समोसा, मतलब कैलोरी काउंटिंग आज के दिन छोड़ दीजिए, कुछ घंटे हैं आपके पास अभी छोड़ दीजिए. और बस सेलिब्रेट करिए इस दिन को. एंड यू कैन कॉल इन टू पार्टिसिपेट 972-235-5555. मुझे बताइए कि आपको कौन सा बिना डाइटिंग वाला खाना पसंद है. मतलब कि सम दैट कुड बी अनहेल्दी, शायद हो सकता है कुछ लोग उसको बोल के, देख कर उस खाने के बारे में सुनकर बोले अरे ये खाता है, इतना बर्गर खाता है, ये खाता है. बट नो, दैट्स टुडे हर चीज माफ है, बल्कि ये चीजें हम सेलिब्रेट करते हैं. सो यस, यू कैन से एनीथिंग दैट यू लाइक ईटिंग, एंड इफ इट इज अनहेल्दी एंड इट इज और इट इज कंसिडर्ड अनहेल्दी और इट इज नॉट कंसिडर्ड अ डाइट फूड. अनहेल्दी तो देखिए अच्छा वर्ड नहीं है, तो मैं अनहेल्दी नहीं बोलूंगी, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड अ डाइट फूड. फॉर एग्जाम्पल फ्राइड खाना जो होता है वो डाइट में नहीं माना जाता. चाट वगैरह बहुत इस तरह की चीजों, क्योंकि उनमें बहुत सारी चटनी और ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं, बर्गर्स होते हैं, फास्ट फूड्स होते हैं, इनको डाइट वाला खाना नहीं माना जाता. लेकिन इसका मतलब तो नहीं है कि ये बुरे होते हैं, मजा तो बड़ा आता है खाने में. 972-235-5555. कौन सा नो डाइट खाना आपको पसंद है, क्या खाने जा रहे हैं बताइएगा.

0: दिस इज अ क्लासिक सॉन्ग. और कस इस वक्त जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उन्हें बता दें हमारी थीम क्या है, बिकॉज समटाइम्स पीपल आस्क मी. हमारी थीम है खाने से रिलेटेड, और खाना आपको जो पसंद है, और अगर कम डाइट वाला खाना हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि आज का दिन नो डाइट डे है. मतलब डाइट पे ध्यान नहीं देना चाहिए. अब अगर आप उन चंद लोगों में से हैं जिनको पसंद ही लो डाइट वाले खाने हैं, क्योंकि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं मतलब उनको पसंद ही लो कैलोरी, मतलब एवोकाडो ही उनका फेवरेट फ्रूट है, फ्रूट है वेजिटेबल है चलिए जो भी फ्रूट है वो ही उनका फेवरेट फ्रूट है. और फनिशर रेडियो यू आर ऑन एयर.
1: जी ये पारो का शो है.
0: हाँ जी पारो का ही शो है, बिल्कुल सही जगह नंबर लगाया आपका.
1: जी आपने जो पूछा था क्वेश्चन, जो अनहेल्दी फूड सबसे ज्यादा पसंद है,
0: हाँ जी
1: मुझे सबसे ज्यादा समोसे खाना पसंद है. जब भी मेरा दिन बुरा होता है तो मैं समोसे खाती हूँ. इवनिंग डैलस में, हाँ, फूड फूड कोर्ट या बंडी पर, तो
0: हाँ.
1: वो बहुत अच्छा लगता है, उससे दिन अच्छा हो जाता है.
0: अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, दिन अच्छा हो जाता है. और देखिए समोसे भी कितनी वैरायटी आती है, आपको कौन सा आलू वाला पसंद है कि आजकल तो बड़े सारे आ गए उसमें चिकन कीमा और ये
1: वो
0: सब सब.
1: छोटे ऑनियन वाला समोसे पसंद है,
0: अच्छा अनियन
1: उससे
0: वाले.
1: इंडिया की याद आती है. हाँ उससे इंडिया की याद आती है, क्योंकि हाँ वो यूजुअली इंडिया के स्वीट शॉप्स में वैसे मिलते हैं ना, तो यहाँ पर जब मिलना स्टार्ट हुए थे डैलस एरिया में, इर्विंग यहाँ पर,
0: हाँ.
1: तो वहाँ जब से थोड़ा हाँ वो होम वाली फीलिंग कम हो जाती है, लाइक इंडिया की फीलिंग आ जाती है. हाँ
0: समोसे के अंदर
1: एंड
0: के
1: मुझे
0: प्याज
1: आपका
0: ने
1: शो. हाँ
0: आपको इंडिया पहुंचा दिया. हाँ जी आप कह रही थी शो अच्छा लग
1: जी
0: रहा है, चलिए चलिए
1: आप
0: वो जल्दी से
1: मुझे
0: बता दीजिए
1: हाँ
0: बिफोर ब्रेक.
1: आपका शो बहुत अच्छा लग रहा है.
0: थैंक यू सो मच.
1: मैं रिसेंट से ही सुनना सुनना स्टार्ट करी.
2: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस.
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
5: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
6: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
5: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
7: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
8: इमिग्रेशन पेपर वर्क से परेशान? अब टेंशन छोड़िए. easypetition.com के साथ USCIS पेटिशन फाइल करना हुआ इजी. आप खुद इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर और फाइल कर सकते हैं पेटिशंस लाइक F1 या B1 चेंज ऑफ स्टेटस, F1 OPT, H4 विद EAD, I-485 और I-485J, N400 नेचुरलाइजेशन और 200 से भी ज्यादा पेटिशन टाइप्स, और प्राइसिंग सिर्फ $30. तो आज ही जाइए easypetition.com पर. easypetition.com.
9: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
10: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा page 3 में होना मेरी गारंटी है.
9: कैसे?
10: page 3 eatery?
9: No, not another restaurant again.
10: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
9: मतलब great food, great drinks, and great company. यानी कि मैं.
11: page 3 eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
12: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
13: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
14: इंडिया में घर खरीदना या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना अब हुआ और भी आसान। गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो अब फ्रिस्को में। मिलिए मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के टॉप डेवलपर्स से, सब एक ही छत के नीचे। 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कीजिए और अपने प्लान्स के हिसाब से सही प्रॉपर्टी चुनिए। आइए 9th एंड 10th मई को हयात रेजेंसी फ्रिस्को डलास में, सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक। एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। माई स्क्वायर फीट प्रेजेंट्स सबसे बड़ा इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो।
15: हेलो गाइज, दिस इज मी किंजल दवे एंड यू आर लिसनिंग एंड वॉचिंग फन एशिया रेडियो।

थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू फनिशा रेडियो एंड लिसनिंग टू मी योर्स ट्रूली पारो. और आज दो लोगों से मैंने बात करी, बहुत इंटरेस्टिंग हमारी लिसनर, और मैं उनके गाने भी लगाऊंगी. उन्होंने गाना नहीं बोला लेकिन उन्होंने मुझे बताया उन्हें क्या पसंद है खाने में, तो मैं उन्हें वही परोसूंगी जो उन्हें पसंद है. और रूपा जी, मैं आपसे पहली बार बात कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल लगा नहीं आपने कहा कि वी हैवन टॉक्ड, क्योंकि मैं दो रूपा से, हो सकता है वो दो जो रूपा और जो दो रूपा है वो शायद इस वक्त सुन रही हूँ, क्योंकि मैं पिछले कुछ हफ्ते उससे, मैंने एक पहले रूपा से, रूपा नंबर वन से बात करी, फिर रूपा नंबर टू से, अब आप रूपा नंबर थ्री हैं. और भी कोई अगर रूपा हैं डालस में जिन्होंने अभी तक पारो से बात नहीं करी है तो क्यों नहीं करिए, 9723555555 पर बात करिए. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी मेरे पास जो फोर्थ रूपा है, जो मेरी ओरिजिनल रूपा है, मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, उसने भी कुछ मैसेजेस किए हैं एंड आई वॉज रिप्लाइंग टू दोज मैसेजेस अ लिटिल व्हाइल बैक. तो आज लगता है रूपा का दिन है, लेकिन आज एक और दिन है, दैट इज इंटरनेशनल नो डाइट डे. रूपा, आपकी बात अधूरी रह गई क्योंकि हम तो बात करते रहे लेकिन एक ब्रेक में चले गए. तो मैं हमारे लिसनर को बताना चाहती हूँ कि रूपा ने मेरा दिल बहुत खुश कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा, वो ये कह रही थी, वो कहते कहते बात कट गई उनकी, एंड वी वेंट इनटू अ ब्रेक एट 8 o'clock, पर वो ये कह रही थी कि उन्हें शो बहुत अच्छा लगता है और उन्होंने अभी रिसेंटली सुनना शुरू किया है. और वो ये, उन्होंने ये भी ऐड किया जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ओरिजिनल उनका जो डायलॉग है वो ये है कि मैं पहले क्यों नहीं सुन रही थी आपको. थैंक यू सो मच रूपा, मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन अब सुनते रहिएगा, गायब मत हो जाइएगा. जैसे समोसे में से अगर आलू गायब हो जाए, समोसे में से अगर प्याज गायब हो जाए तो समोसा समोसा नहीं रहता, वैसे ही अगर हमारे फनेशिया के लिसनर्स अगर हमें ना सुने, रूपा और हमारे और भी जो सब लिसनर्स हैं ना सुने, तो फनेशिया आप लोगों का फेवरेट स्टेशन कैसे रहेगा. और ये बताना चाहती हूँ एक इंटरेस्टिंग बात, पहले ऐसा करते हैं आपका गाना चला देती हूँ जो मैंने आपके लिए चूज करा है, समोसे वाला, एंड देन आई विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट समोसा, क्योंकि समोसा तो मुझे भी बहुत पसंद है, मेरा तो मन करा अभी खाने का.

मुझे ये फिल्म बहुत पसंद है, मैंने कई दफा देखी मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, और इसमें मुझे एक्चुअली सबसे ज्यादा पसंद है कादिर खान साहब जी हाँ। वैसे तो अक्षय खन्ना इज डन रियली गुड कॉमेडी इन खिलाड़ी वाली फिल्मों में, वो एक्शन कॉमेडी बहुत अच्छी करते थे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कादिर खान इट्स लाइक जस्ट ही स्टील्स द शो। लेकिन देखिए, हमारे बॉलीवुड के लिरिसिस्ट ने भी ये चीज रियलाइज करी है कि समोसे और आलू को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी सच्ची बात है कि बहुत सारे अलग अलग तरह के समोसे बन गए हैं, जैसे रूपा ने कहा कि वो उन्हें प्याज वाला समोसा अपने घर की याद दिलाता है। रूपा जी, आपसे पूछा नहीं मैंने आप कहां को बिलोंग करती हैं, क्योंकि दिल्ली से बिलोंग करती हूं मैं, और दिल्ली में हम लोग प्याज वाले समोसे नहीं खाते थे ज्यादा ज्यादा का मुझे तो याद भी नहीं है खाते थे और आलू के खाते थे, लेकिन आलू में पनीर डलता था और उससे थोड़ा रेट बढ़ जाता, 10-15 रुपए बढ़ जाता पनीर का, तो कभी कभार हम लोग थोड़ा सा पैसा खर्च करने का, जब जेब में थोड़ा ज्यादा पैसा होता था कॉलेज वाले में, तो हम लोग पनीर वाला समोसा खाते थे। आलू फिर भी होता था, पनीर के 2-3 टुकड़े पड़े होते थे। तो एक ड्राई फ्रूट वाला समोसा हमारा ये बहुत फेमस है, हमारा कुमार की हलवाई में दुकान, मुझे तो लग रहा है कि मैं कुमार के हलवाई की दुकान के प्रमोशन कर रही हूँ दिल्ली में, बट इट्स ड्राई फ्रूट का समोसा इज द अदर वन दैट इज वेरी गुड, जो बहुत अच्छा मुझे लगता है। तो ऐसे बड़े सारे समोसों के बन गए हैं, अलग अलग आइट्रेशन कह सकते हैं, अलग अलग तरह के प्रिपरेशन, और बहुत सारे लोग उसमें नॉन वेज लैम्ब कीमा और ये सब अलग अलग बना के भी समोसे बनाते हैं। तो अच्छी बात यह है कि समोसे में आप बहुत सारे उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगली कॉल मेरे पास जो आई थी वो समरीन की थी, और समरीन ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई उन्होंने।

उसों के बन गए हैं, अलग अलग आइट्रेशंस कह सकते हैं, अलग अलग तरह के प्रिपरेशन ना, और बहुत सारे लोग उसमें नॉन वेज, लैम्ब, कीमा और ये सब अलग अलग बना के भी समोसे बनाते हैं। तो अच्छी बात यह है कि समोसे में आप बहुत सारी उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगली कॉल मेरे पास जो आई थी वो समरीन की थी, और समरीन ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि उनको भेजा फ्राई, आई मीन ब्रेन मसाला पसंद है, और जैसे गोट का ब्रेन, और वो खुद बनाती हैं और कहती हैं बहुत टेस्टी बनता है। तो समरीन जी, वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन आपने जैसे डिस्क्राइब किया मुझे लग रहा है कि बड़ा ही टेस्टी होगा ये भेजा फ्राई। तो मैंने आपके लिए गाना निकाला है भेजा फ्राई।

इसमें सच में काफी भेजा फ्राई होता है, स्पेशली दिस इज एक्चुअली भेजा फ्राई टू, लेकिन भेजा फ्राई वन इज अ वेरी गुड फिल्म. कॉमेडी है उसमें, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग तरह की कॉमेडी है. एंड कोई कैसे नाक में दम कर देता है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है. ऐसी सिंपल सी कॉमेडी है बट बड़ी रियलिस्टिक सी है. और इस चीज से देखिए, रियलिटी की अगर बात करें, रियलिस्टिक चीज की बात करें, तो ये भी सच है कि कभी कभार कुछ एक्सीडेंट या इंसिडेंट या फॉल इस तरह की चीजें हो जाती हैं. सो अगर ऐसा कभी हो, इफ यू आर इन्वॉल्व इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट और अ स्लिप और फॉल इंसिडेंट, अटर्नी ओमर ख्वाजा का नाम आप याद रखिएगा, बिकॉज अटर्नी ओमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड गेट यू द हेल्प एंड द कंपनसेशन दैट यू डिजर्व. इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील करना इज वेरी स्ट्रेसफुल, एंड सो यू नीड एन अटर्नी दैट इज ऑन योर साइड एंड विल मेक श्योर दैट यू आर कंपनसेटेड एंड यू डोंट पे अंटिल यू विन. फ्री कंसल्टेशन के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनका नंबर है 4693005046, या फिर उनकी वेबसाइट विच इज आप यू कैन विजिट द वेबसाइट विच इज attorneyomer.com. मैं रहूंगी आप लोगों के साथ 9 बजे तक, 7 बजे से चल रही है हमारी गाड़ी, कल भी आऊंगी 7 से 9 आप लोगों के साथ रहती हूं मैं पारो. और आज के दिन से रिलेटेड, मतलब कल का दिन अलग होगा तो आज का जो दिन है उससे रिलेटेड जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उन्हें बता दें, टुडे इज इंटरनेशनल नो डाइट डे. मतलब आज हम डाइट की बात नहीं करते, आज हम चीनी कम की बात नहीं करते. लेकिन एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि अगला जो सुनिधि जी ने कॉल किया, सुनिधि जी जब भी आप कॉल करती हैं बड़ा अच्छा लगता है. सुनिधि जी ने कहा शी इज एंजॉइंग द शो, थैंक यू सो मच. और उन्होंने मुझसे एक चीज कही कि पारो आप इतनी एनर्जी आती है कहां से, ऐसे कुछ तो उन्होंने कहा, इस एनर्जी की बात करी. तो सच्ची बात यह है कि एनर्जी आप लोगों से आती है, बिकॉज व्हेन यू कॉल, व्हेन यू इंटरैक्ट, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. मुझे लोगों से ही एनर्जी आती है, मैं थोड़ी सी लोगों की एनर्जी ले लेती हूं, आई होप यू ऑल डोंट माइंड. तो दैट इज आई थिंक द सीक्रेट. आई एम अ पीपल्स पर्सन, आई एंजॉय टॉकिंग टू पीपल. मुझे लोग बड़े अच्छे लगते हैं, और हर तरह के लोग, मतलब अलग अलग तरह के लोग. आई एम जस्ट वेरी वेरी एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट टाइम्स टू कह सकते हैं हम. सो आई रियली एंजॉय दैट. तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग कॉल करते हैं और शेयर करते हैं बातें. और एक्सट्रोवर्ट मतलब इट्स नॉट जस्ट कि हाय हेलो वाला. आई रियली लाइक टू मेक कनेक्शंस एंड टॉक विद पीपल, और अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि आई फील दैट व्हेन वी हम जब आप लोग कुछ शेयर करते हैं, आपको कैसा खाना पसंद है, मैं शेयर करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक डीपर हमारा कनेक्शन बन रहा है, एंड दैट इज समथिंग दैट आई रियली लाइक एंड एंजॉय. तो थैंक यू सो मच सुनिधि जी, जो आपने इतना शेयर किया. और उन्होंने कहा कि मुझे मिर्ची पसंद है और चीनी कम खाने के लिए बोलते हैं. देखिए ये बात सही है कि चीनी के बड़ी बड़े नुकसान हैं. तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि चीनी भर भर के खाइए, डेफिनेटली आई विल नॉट से दैट, एंड एब्सोल्युटली एग्री कि चीनी की प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, डायबिटीज एंड ऑल दैट. लेकिन ये भी सच है कि कभी कभार तो थोड़ा मन करता है मीठा खा लें. तो आज के दिन खा लीजिए ना, अगर आप खा सकते हैं, कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, यू कैन ईट सम चीनी. तो आज के दिन डाइटिंग आप छोड़ सकते हैं, अगर हेल्थ रीजन नहीं है अगेन तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आज का दिन है इंटरनेशनल नो डाइट डे. पारो इन द हाउस.

मुझे ऐसा लगता है कि गुड फूड इज मेमोरीज यू कैन टेस्ट. कई बार हम कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स से मिलते हैं, बहुत साल बाद मिलते हैं, वी स्टिल टॉक अबाउट फूड. याद है वो वहाँ चाट खाया करते थे कनॉट प्लेस में, हमारे एक बड़ा फेवरेट और फेमस चाट वाला होता था जो आलू की चाट बनाता था, शायद अभी भी बनाता हूँ, बस स्टैंड है एक बड़ा फेमस शिवाजी स्टेडियम, वहाँ वो चाट बनाता था आलू की. और उसकी खासियत ये थी कि बहुत गर्मी बहुत पड़ती है दिल्ली में तो स्वेट बड़ा करता था, ग्लव्स वगैरह पहनता नहीं था लेकिन टेस्ट बड़ा अच्छा आता था चाट का, आलू चाट का, मसाले बहुत अच्छे होते थे और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स होते थे शायद. एवरी मील टेल्स अ स्टोरी. और चाय तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, सो अ कप ऑफ चाय मुझे ऐसा लगता है कैन फिक्स कन्वर्सेशंस दैट साइलेंस कैन नॉट. अगर दोस्तों के साथ बैठ के आप बढ़िया सी चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, तो मतलब कुछ बात नहीं भी कर रहे हैं तो आई थिंक आप ऐसे लगता है कि जन्नत में है. एंड फूड टेस्ट बेटर दैन वेन शेयर्ड, यानी कि खाना शेयर करके खाइए, खाली झगड़ा करके, खींचतानी करके मत खाइए. एंड विद दैट, एक गाना जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है व्हेन वी टॉक अबाउट खाना, ये मेरी तरफ से यानी कि पारो की तरफ से आप सब लोगों के लिए. और एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, हमारे लिसनर कॉल करके कह रहे हैं वो घर में जाके क्या खाएंगे, और अगर उन्हें कोई मना करेगा कि तुम ये खाना मत खाओ, अनहेल्दी है, तो बोलेंगे आज नो डाइट डे है. और ये मैं नहीं कह रही, ये आप गूगल कर सकते हैं, इंटरनेशनल नो डाइट डे है, तो आज इंटरनेशनल नो डाइट डे है, तो आज आप खा सकते हैं. अगेन थोड़ा सा संभल के खाइएगा क्योंकि हेल्थ का ध्यान तो रखना ही चाहिए, बट आई थिंक द पॉइंट अबाउट नो डाइट डे इज नॉट टू बी अनहेल्दी. द पॉइंट ये नहीं है कि आप कुछ अनहेल्दी खा लें जो आपको मना है, अगर आपको डायबिटीज है, आप शुगर नहीं खा सकते तो आप शुगर भर के खाए, नो दैट इज नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज टू सेलिब्रेट द लव ऑफ फूड, जो खाना है उसका, उसके लिए जो हमारा डीप कनेक्शन है, जो हम खाने से हमारी यादें और कहानियां जुड़ी हुई हैं. जैसे कि हमारी एक मोहतरमा रूपा जी ने कहा कि उनका खाना, जब वो ये समोसा खाती हैं और वो प्याज वाला समोसा खाती है तो अपने बचपन में चली जाती हैं. सो दैट इज वॉट फूड डज टू अस. फूड इज जस्ट नॉट समथिंग जो हमारे कैलरीज और ये और इस सबसे उठ के भी उसको कभी कुछ और समझना चाहिए. ये जो खाना है ये कहानी बताता है, कुछ इमोशंस बताता है, और ये कहीं ना कहीं हमारे बहुत डीप हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है. मुझे लगता है कभी अगर हमारे एक लेयर है, अगर उसको निकाले तो अंदर से बहुत सारा खाना ही निकलेगा

0: Some people count calories, other count moments around the table. Kyunki ye jo din hai aaj ka, that is about that. It is about celebrating food, celebrating our connection with food and celebrating different body types. Kyunki ye bhi bahut zyada hota hai. Diet is not just diet, it is also related to our body image and our perception. Hum kya samajhte hain apne bare mein, dusro ke bare mein judge karte hain, ye mota hai, ye patla hai, ye aisa hai, ye waisa hai. And jab hum sheeshe ke samne khade hote hain to aur bhi bahut zyada judge karte hain, kyunki khud ko to hum zyada hi judge karte hain. Manav ki aadat hai, insaan ki aadat hai ki wo अपने आप को कुछ ज्यादा ही जज करता है, सेल्फ क्रिटिकल, बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिकल होता है. तो दैट टुडे इज अ डे टू डिसॉल्व ऑल दिस एंड टू सेलिब्रेट अस एज वी आर. जो भी हमारा बॉडी शेप, साइज, जो भी है, दिस इज अ डे टू सेलिब्रेट दैट एंड एंजॉय फूड. जो भी खाना, जैसा भी खाना, और अगर आपको डाइटिंग वाला ही खाना पसंद है, आपको पसंद ही है लो कैलोरी वाला, तो ठीक है. अगर आपको वाइट एग ही पसंद है, आपको नहीं पसंद है, तो दैट इज गुड. बट इट इज ऑल्सो ट्रू दैट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक अ लॉट अबाउट डाइट एंड कैलोरीज बिफोर रियलाइजिंग वॉट दे एक्चुअली लाइक. सो टूडे इज अ डे कि आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए वो वाली चीज, बिकॉज द किचन इज वेयर ऑर्डिनरी डेज बिकम स्पेशल. ये तो मुझे सच में लगता है. आई थिंक किचन इज समथिंग दैट स्पेशली व्हेन यू सिट टुगेदर विद फैमिली, यू कुक टुगेदर, इट बिकम्स रियली समथिंग स्पेशल एंड लॉट ऑफ मेमोरीज. हमारे कल्चर में तो खैर खाना बनाना मतलब बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है मेमोरीज से और कल्चर से और हमारी हेरिटेज से. सो आई डू फील दैट जब ये चीजें हम करते हैं, खाना बनाते हैं, फैमिली के साथ मिलके खाते हैं, तो ये एक बहुत जबरदस्त कनेक्शन बन जाता है. खाने की बात अगर कर रहे हैं तो खाली खाने की डिशेस नहीं, मैं तो उसमें पान भी ऐड कर दूंगी. मुझे पान बड़ा पसंद है. कई बार आई डोंट ईट इट रेगुलरली बिकॉज पान के भी बड़े सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, लेकिन देखिए कई बार होता है पान थोड़ा सा तो खा के मजा आ जाता है. स्पेशली दिल्ली में, आई एम श्योर पूरे इंडिया में और यहां तो यूएस में भी अलग अलग तरह के पान मिलते हैं आजकल. तो पता नहीं क्या गया, चॉकलेट पान एंड सो मेनी, जैसे समोसे के इतने सारे रेसिपीज आ गई, ऐसे जैसे पान की बड़ी सारी रेसिपीज आ गई. एक फायर पान बड़ा पॉपुलर है हमारे दिल्ली का, मुंह में आपके डालते हैं आग जल जाती है, लेकिन जलती नहीं है, इट्स जस्ट टू शो, बट बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब पिक्चर अच्छी आती है. बट जो ओरिजिनल पान है वो बनारस वाला, वही सबसे ज्यादा पसंद है मुझे, यानी कि पारो को.
1: का तुम का बताई, अब का समझाई, बड़ी दुर्घटना है, मुश्किल बचना है, चला ऐसा झगड़ हो.

कभी हुआ गए कभी यहाँ गए कभी हुआ गए कभी इधर भगे कभी उधर भगे फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान में जान तो आई।

0: हीरे मोती मैं चाहूं।
1: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
2: Kya matlab?
3: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
3: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
2: Ab to karna hi padega, madam.
4: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: Ghar ki yaad nahi aayi tujhe jab se.
6: Aati hai yaar. बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
7: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
6: सच में बिल्कुल घर जैसा।
7: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
8: कभी ऐसा लगता है कि डिसीजंस आप ले रहे हो पर रिजल्ट्स कंट्रोल में नहीं, करियर रुक सा गया है, रिश्तों में क्लैरिटी नहीं और फ्यूचर बस एक सवाल बनकर रह गया है।
7: हर जगह आंसर्स ढूंढने से बेहतर है सही जगह समझना। कनेक्ट विद अनीता चुंद्रू एट द कॉलोनी टेक्सिस। चार्ट रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हवन सर्विसेज से मिले सही गाइडेंस। कॉन्टैक्ट 9453387670। ईमेल astro111city@gmail.com। अनीता चुंद्रू, योर लाइफ विद राइट डायरेक्शन।
9: कॉन्टैक्ट 9453387670। ईमेल astro111city@gmail.com और विजिट टैक्सी एट 5200 मेमोरियल ड्राइव, कॉलोनी, टेक्सिस।
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
12: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
13: Goodness is a beautiful thing. And good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadaqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.

Welcome back. And had a lot of fun talking with you all. Or I think thoda sa phone mein gadbad thi, to main aapka naam nahi jaan pai. I think Pooja ji. Mujhe aisa lagta hai that you are Pooja. But agar maine kuch galat suna ho ya galat samjha ho, to I'm sorry about that. Aapne baat kari khana banane ki. Aur unhone kaha ki mujhe khana banana bahut acha lagta hai. And this also is like a family tradition. Kyunki bahut sari cheeze jo bachpan mein unki mother banaya karti thi. Aur unhone jo ek recipe thodi si batai. And that is लौकी की सब्जी उसको हाथ से क्रश करके घी में बनाना, दैट सीम्स सो डिलिशियस. मैंने लौकी, इनफैक्ट आज ही मैं सोच रही थी लौकी की सब्जी मैंने नहीं बनाई है, मैंने कुछ और बनाया. मैंने टोमेटो राइस बनाया आज, बड़ा सारा मक्खन वगैरह डाल के. तो आज मैंने पूरा फॉलो किया इंटरनेशनल नो डाइट डे. मैंने सोचा कि मैं पहले लोगों को कहूँ फॉलो करने के लिए, उसके पहले मैं खुद ही फॉलो करके आ जाऊँ. तो मैंने भर के जो है चावल खाए हैं, टोमेटो राइस, और बनाए भी मैंने बड़े सारे मसाले वाले हैं. सो आई रियली enjoyed that. So उन्होंने ये कहा कि अब वो अपने बच्चों के लिए चीज बनाती हैं, और एक रोटी चूर उन्होंने कहा. मुझे ठीक से समझ नहीं आया रोटी चूर क्या है, मैंने मोती चूर समझा, बट रोटी चूर और ये सब्जियां जो उनकी मदर बनाया करती थी वो अपने बच्चों के लिए बनाती हैं. एंड आई एम प्रीटी श्योर आपके बच्चे भी यही ट्रेडिशन, ये एक फैमिली ट्रेडिशन बन जाता है. ऐसे हमारे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं फैमिली ट्रेडिशन वाले. हम लोग दिल्ली जाते हैं तो देर इज अ रेस्टोरेंट दैट वी ऑलवेज गो नो मैटर वॉट, एंड दैट इज इट बिकम्स लाइक अ फैमिली ट्रेडिशन. कई बार ये हम जो खाना खाते हैं या इस पर्टिकुलर दिन यहां खाते हैं, रेस्टोरेंट हो सकता है, घर हो सकता है, फन पिज्जा किचन हो सकता है, एनी प्लेस दैट यू मेक अ कनेक्शन विद एंड यू ईट देयर एंड यू स्पेंड सम ग्रेट मेमोरीज. ऐसे हमारे कॉलेज में दिल्ली में कैंटीन होती थी, उसको 24H कैंटीन बोलते थे क्योंकि 24 आवर खुली रहती थी. तो रात को 2 बजे हम हॉस्टल से जाके वहां पे खाते थे, और एकदम आलू के परांठे भर भर के मक्खन लगा के खाते थे. लेकिन बात यह थी कि उस वक्त डाइट नो डाइट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि कितना भी खाओ वेट बढ़ता ही नहीं था. और अभी ये है कि कुछ भी नहीं खाओ फिर भी बढ़ता है.

भाई वाह, भाई वाह, बहुत मजा आ रहा है मुझे आप लोगों की बातें सुन के। अंशुमन जी, बहुत टाइम बाद आपसे बात करी। दिल्ली के हमारे अंशुमन साहब भी, और खाने पीने की पहले हम कई साल पहले जब शो किया करते थे एक पारो कॉलिंग पारुल, तो पारुल के साथ जो पारुल भाटी हमारी आरजे हैं और मैं, हम दोनों मिलके करते थे एक शो। और अंशुमन जी, मुझे तो लगता है अंशुमन जी आप हमारे तीसरे आरजे थे, क्योंकि अक्सर आपसे बात होती थी ऑन एयर और हम तीनों ऐसे बातें करते थे जैसे हम एक ही कमरे में, एक ही स्टूडियो में हैं। एंड वी वर टॉकिंग अबाउट पान, क्योंकि अंशुमन साहब कह रहे हैं कि उनको पान बहुत पसंद है। और एक आपने बात बोली वो ये कि आप अभी कुछ बढ़िया बढ़िया खाना लेके जा रहे हैं और आपको, आपको गिल्ट नहीं होगा क्योंकि आज है नो डाइट डे, मतलब आज पूरी छूट है, आज आप जो खाएं बिना गिल्ट के खाएं, कल के लिए रख लीजिए सारा गिल्ट विल्ट। मतलब कल जो खाएंगे अगर उसके लिए गिल्ट करना है तो करिए, आज जो खाया है वो माफ, आज सब कुछ माफ व्हेन इट कम्स टू खाना, बिकॉज इट इज एन इंटरनेशनल नो डाइट डे। और चूंकि आपने अंशुमन साहब पान की बात करी, गुलकंद की बात करी, मुझे भी बहुत पसंद है वो मीठा मीठा एकदम। एंड विद दैट आई वॉन्ट टू प्ले अ सॉन्ग फॉर यू, मैं आपके लिए गाना चलाना चाहती हूँ, ढूंढा है मैंने, एंड लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग। इसमें भी बड़ा पान पान है, क्योंकि अंशुमन साहब ने कहा किसी भी चीज में अगर पान का तड़का लग जाता है तो उन्हें पसंद आता है। मेरे साथ भी यही है, मैं तो अपने बर्थडे में भी पान के खाती हूँ, मतलब पान तो होना ही चाहिए। शायद पिछले जन्म में मैं पनवाड़ी होंगी,

इस गाने को जब भी मैं सुनती हूँ तो मुझे ये समझ नहीं आता कि बच के आने की क्या जरूरत है. मतलब प्रॉब्लम पान की दुकान से है, बचने के लिए कह रहे हैं ना, तो बी सेफ एंड डोंट बी सॉरी, बी सेफ, बच के रहना. तो ये पान की दुकान की बात कर रहे हैं कि जूली के मकान की बात कर रहे हैं? किससे बचने की जरूरत है? जूली को तो मैं नहीं जानती, लेकिन पान के बड़े सारे किस्से हैं. पान जो कई बार दैट आई हैव सीन अ लॉट हमारे पुरानी दिल्ली साइड में, अगर आप चले जाएं, एंड लॉट ऑफ प्लेसेस इन यूपी एंड बिहार भी होता है, हर जगह होता है बहुत पूरे इंडिया में, बट कुछ कुछ सेक्शन हैं जहां ये ज्यादा फेमस है, जहां पान को थोड़ा ज्यादा इंजॉय किया जाता है, ज्यादा चबाया जाता है, और उसके बाद तो जरा संभाल के चलते हैं लोग रोड पे. कहीं ऐसा ना हो कि छींटे पड़ जाएं.

अगर खाने की बात करते हैं तो चंडीगढ़ बाइट्स की बात तो करेंगे ही करेंगे. जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उन्हें बता दें, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट फूड एंड दिस इज इंटरनेशनल नो डाइट डे, यानी कि आज मई 6 को डाइटिंग नहीं करता कोई. बाकी दिन करते हैं ना हम 364 डेज, तो आज के दिन क्यों करने का डाइटिंग. एंड चंडीगढ़ बाइट्स की अगर बात करें तो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इट इज इन एलन, इट इज लोकेटेड ऑफ मैकडरमेट ड्राइव इन एलन, सो यू कैन विजिट chandigarhbites.com फॉर डिटेल्स. अगर अब है आपका चांस टू विन कड़ाई पनीर और कड़ाई चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन, और आप उनकी स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेज रोटेटिंग डेली फॉर लंच भी आप इंजॉय कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल देयर. लेकिन जो गिव अवे है वो कड़ाई पनीर या कड़ाई चिकन का है. तो क्या करना है आपको, एक सवाल पूछूंगी मैं आपसे. अशोक साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. कई दफा आपसे बात होती है, आशा लौट रहे होंगे घर, तो कई सारे हमारे लिसनर्स हैं जो थोड़ा देर तक काम करते हैं. थैंक यू सो मच देर तक काम करने के लिए और देर घर लौटने के लिए, ताकि आप पारो के साथ बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं. मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग देर तक काम करते हैं, क्योंकि फिर वो मुझे सुनते हुए जाते हैं. तो अशोक साहब, और आपके गानों की चॉइस भी बड़ी अच्छी होती है, तो उन्होंने एक गाना करा रिक्वेस्ट और मुझे ये गाना बड़ा पसंद है, तो मैंने सोचा इसी से हमारा गिव अवे कर देते हैं रिलेटेड, एंड सवाल जो है इसी से रिलेटेड है. और उन्होंने एक चीज़ भी बड़ी अच्छी बोली, उन्होंने कहा कि ये गाना है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी. तो उन्होंने कहा कि ये गाना मैंने 2 दिन से सुना नहीं है, तो ये तो बड़ा गजब हो गया. मतलब आशिकी फिल्म का गाना है, आपने 2 दिन से नहीं सुना, ये तो ठीक नहीं है. ज़रूर मैं चलाती हूँ आपके लिए. लेकिन हमारा गिव अवे का सवाल क्या है, सवाल ये है कि आशिकी फिल्म, मैंने बता ही दिया आपको आशिकी फिल्म है, आशिकी फिल्म किसने लिखी है. 2 लोगों ने लिखी है, एक ने नहीं, 2 लोगों ने इसकी स्टोरी लिखी है, क्योंकि स्टोरी बहुत फेमस है आशिकी की, एंड इट वॉज अ ब्लॉकबस्टर. मतलब राहुल रॉय साहब को बिल्कुल आसमान पे पहुंचा दिया इस फिल्म ने, एंड अभी तक उनको आशिकी से ही जाना जाता है हमेशा, उनको अगले जन्म में भी शायद आशिकी से जाना जाएगा. 9723555555 द फर्स्ट पर्सन टू गिव द राइट आंसर, 2 नेम्स जिन्होंने लिखा है अपने कलम से आशिकी की प्यारी प्यारी कहानी.

एक बार फिर से बताना चाहती हूँ आपको, बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन है. सवाल मेरा ये नहीं है कि कौन सी है ये फिल्म, सवाल ये है कि आशिकी 1990 की, जिसका आप गाना सुन रहे हैं, इसको दो लोगों ने लिखा है. देर आर टू राइटर्स हु हैव रिटन द स्टोरी, नॉट द पर्सन हु हैज प्रोड्यूस द स्टोरी, जिन्होंने लिखा है. सो आई वॉन्ट द नेम ऑफ द राइटर्स. आई नो थोड़ा सा शायद हो सकता है टेढ़ा सवाल लग रहा हो लोगों को, क्योंकि मुझे अलग तरह के जवाब मिल रहे हैं. सो यस, आई नीड द नेम ऑफ द राइटर्स एंड दैट्स द सवाल. इन ऑर्डर फॉर यू टू विन चंडीगढ़ बाइट्स के कढ़ाई पनीर एंड और कढ़ाई चिकन.

0: फनिशर रेडियो, यू आर ऑन एयर।
1: हेलो,
0: हाँ जी अमिता जी, कैसी हैं
1: आप? अच्छी बना देती है शाम हमारी।
0: ओह थैंक यू सो मच, बड़े टाइम बाद आपसे बात हो रही है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अमिता जी,
1: आई ऑलवेज एंजॉय यू।
0: Thank you so,
1: so
0: much.
1: I wanted to let you know that you and you anything you play, I always enjoy that too.
0: Thank you so much, Amita ji. Thank you again. Okay,
1: okay.
0: Sure. Bye.
1: Okay, take care.
0: Sure. Bye.
1: Drive safe. Bye.
0: Thank you. वक्त हो गया है और मैं आप जाने का मेरे, और मैं बताना चाहती हूँ कि करीम बुधवानी साहब इज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द राइट आंसर। रॉबिन भट्ट, महेश भट्ट, कई बार लोगों को लगता है उन्होंने लिखी है, प्रोड्यूस किया था गुलशन कुमार ने, डायरेक्ट किया था महेश भट्ट ने, बट एक्चुअली लिखा था रॉबिन भट्ट और आकाश खुराना साहब ने। एंड आकाश खुराना साहब बहुत अच्छी एक्टिंग भी करते हैं, इज वेरी फेमस एज एन एक्टर एज वेल। सो आई फील दैट क्योंकि कहानी और स्क्रीन राइटर भी हैं वो, क्योंकि ये कहानी इतनी अच्छी कहानी है, इट्स अ वेरी गुड स्टोरी, इट्स नॉट जस्ट अ रोमांटिक स्टोरी, इट्स a lot of complications in it. कभी वक्त होगा तो आशिकी की complications की बात करेंगे, क्योंकि it's a really well made movie, music बहुत अच्छा है और कहानी बहुत अच्छी है, and that is one of the many reasons, आप कह सकते हैं कुछ reasons है जिनकी वजह से वो बहुत हिट है, लेकिन आई थिंक सबसे बड़ा रीजन तो ऑब्वियसली इसका म्यूजिक है। और चूंकि हमने आशिकी, अशोक साहब आपने एक फुलझड़ी सी चला दी है आशिकी के गानों से, तो मैं सोच रही हूँ कि शो को खत्म भी आशिकी के ही गाने से किया जाए। सो आई एम गोइंग टू प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू ऑल, एंड इसके साथ मैं, मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आप लोगों से कल शाम के 7 बजे। आरजे पारो साइनिंग ऑफ।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
3: अरे सारे तो सेम है.
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
3: ओ हाँ, ये तो अलग है.
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Attention store owners, Rabi summer kickoff is back June 3rd and 4th from 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. They are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts throughout the day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Team Rabi's, just bigger, older and way more fun. Rabi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75222. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
6: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
7: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है. पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है. और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8682364641 और विजिट masterjoshigram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई.
8: Astrology readings of our guidance only and results may vary.
9: Did you know Bawarchi Biryani's is the number one Indian restaurant chain in USA? It's true, with over a decade of experience and 50 plus locations across the country. Bawarchi Biryani's makes the best Hyderabadi Dum Biryanis and Andhra Pulaos. They also serve the finest North and South Indian cuisine. So why dine anywhere else?
10: Visit one of their DFW locations, Plano, Frisco, Irving or Richardson.
11: इंडिया में घर खरीदना या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना अब हुआ और भी आसान. गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो अब फ्रिस्को में. मिलिए मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के टॉप डेवलपर्स से. सब एक ही छत के नीचे. 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कीजिए और अपने प्लान्स के हिसाब से सही प्रॉपर्टी चुनिए. आइए 9th एंड 10th मई को हयात रेजेंसी फ्रिस्को डलास में, सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक. एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री. माई स्क्वायर फीट प्रेजेंट्स सबसे बड़ा इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो.
12: अभी मजा आएगा ना भिड़ो.
13: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड

0: फिर वो
1: सब कुछ साफ रख सकते हो,
2: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
3: क्योंकि ये कौन बोला?
2: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
4: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है, पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर। एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर,
10: द फ्लेवर लाउंज, वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस।
9: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज, अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर।
10: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स, फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल।
11: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
12: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
13: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
14: Abhi baja aayega na bhido.
15: Apun bole to, full Bollywood dhamaka.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
3: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
2: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
3: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
4: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
5: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping, aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
6: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.
7: Zindagi ke kai rang. Fun Asia Radio ke sang.
8: Hello, Dallas. क्लॉक ने 10 बजा दिया है और इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिशियली ख़त्म. सो व्हाट्स अप, मैं हूँ स्निग्धा और ये है दिल से डैलस. आज का थीम है नाइट शिफ्ट नॉनसेंस, क्योंकि रात के बड़े जो टॉर्च आते हैं ना, उनका कोई लॉजिक नहीं होता. आप कभी फ्रिज खोलते हैं बिना रीज़न के, या फ़ोन अनलॉक करके भूल जाते क्योंकि अनलॉक क्यों किया. हाँ, बस वही शो है आज का. सो नो ज्ञान, नो टेंशन, सिर्फ रैंडम फन. चलिए स्टार्ट करते हैं एक ज़बरदस्त गाने से.

सो वेलकम बैक डैलिस। एक और सा सवाल पूछूं। हम फ्रिज के बारे में बात कर रहे थे, सो जब हम रात में फ्रिज एक्चुअली खोलते हैं, रीजन क्या होता है? क्योंकि भूख तो यूजुअली नहीं होती वो टाइम पे, बस एक क्यूरियोसिटी होता है, शायद कुछ नया आ गया हो। और सबसे फनी तो ये है, सेम चीज़ें दिखने के बाद भी हम फ्रिज 2-3 बार खोल लेते हैं, जैसे कोई सरप्राइज ड्रॉप करने वाले हो। और जब कुछ नहीं मिलता तो पानी पीकर क्लोज कर ही देते, जैसे मिशन कंप्लीट। सो और अगर घर में कोई और हो तो क्वाइटली फ्रिज बंद करते, किसी को पता ना चले। आई गेस ऑल ऑफ अस मस्ट हैव डन दिस, लाइक हमारे पेरेंट्स ना उठ जाए या घर के कोई बड़े ना उठ जाए।

पानी पीकर क्लोज कर ही देते जैसे मिशन कंप्लीट। सो और अगर घर में कोई और हो तो क्वाइटली फ्रिज बंद करते किसी को पता ना चले। आई गेस ऑल ऑफ अस मस्ट हैव डन दिस, लाइक हमारे पेरेंट्स ना उठ जाए या घर के कोई बड़े ना उठ जाए, एवरीबडी रैंडमली ये करते रहते। सच बोलो, आपने भी फ्रिज बिना रीजन के खोला होगा। चलो इसी मिडनाइट इन्वेस्टिगेशन के साथ सुनते हैं हमारी नेक्स्ट सॉन्ग।

0: वेलकम बैक डैलिस। तो हम बात कर रहे थे हमारी हर रोज़ की फ़नी चीज़ें, लाइक क्यूट से छोटे छोटे चीज़ें। सो अगर मैं बात करूँ हमारी गूगल सर्च हिस्ट्री की, वो एक और एक डेंजरस चीज़ है हमारी लाइफ में। दिन में हम सर्च करते हैं वेदर टुडे, न्यूज़, रेस्टोरेंट्स। रात में कभी कभी हम ऐसे ही सर्च करते हैं व्हाई डू वी एग्जिस्ट, क्या एलियंस रियल है, 2 बजे पे भूख क्यों लगती है। और सबसे फनी चीज़ ये है जब टाइपो होता है, गूगल भी कंफ्यूज होता है और बोलती है भाई तू कहना क्या चाहता है, और कभी कभी ऐसा लगता है गूगल आपको जज कर रही है। सो डोंट थिंक दैट गूगल हमें जज कर रही है, हमारी टाइपो मिस्टेक्स ना कभी कभी हो ही जाते। आज फिर यूजलेस सवाल लेके आ गया, रात का ब्रेन फिलोसोफर भी है और कमेडियन भी, कुछ भी सोच लेते हैं हम, पर कभी कभी कुछ भी सोच लेने से प्यार बढ़ता है।
1: This one's for you.

0: Get ready for the smoky, flavorful goodness of Tandoori Chicken Pizza. Perfectly marinated tandoori chicken, mildly spiced, tender, and bursting with aroma. Layered over creamy cheese and a golden crust. It's the perfect balance. Not too spicy, not too mild. Just right for every flavor lover. Taste the magic of the tandoor on your favorite sliced tandoori chicken pizza. Only at Fun Pizza Kitchen. Fun Pizza Kitchen, where every slice tells a story.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par, thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
2: Yeah! Abhi baja aayega na bhido.
3: Apun bole to, full Bollywood dhamaka, Fun Asia pe!
4: Zindagi ke kai rang. Fun Asia Radio ke sang.
5: 104.9 FM. So welcome back, Dallas. आप सुन रहे हैं दिल से डैलस विद स्निग्धा ऑन फनीशिया 104.9 FM पर. सो हम बात कर रहे थे हमारे आदतों के बारे में. सो एक हैबिट बताऊँ, हमारी रात की आदत. इट्स लाइक OTT स्क्रोलिंग, इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग. शो देखने से ज़्यादा टाइम डिसाइड करने में ही चले जाता है. ये देखूँ, नहीं ये बोरिंग लग रहा है, नहीं ये टू लॉन्ग लग रहा है, और 20 मिनट बाद कुछ भी नहीं देखे. और जब फाइनली डिसाइड करते हो तब नींद आ जाती है, और नेक्स्ट डे सेम प्रोसेस रिपीट. और अब सब बोलते हैं कुछ अच्छा सजेस्ट करो. भाई तुम खुद डिसाइड कर नहीं पा रहे, मैं क्या सजेस्ट करूँ. सो OTT मतलब नथिंग बट कंफ्यूजन प्लस कमिटमेंट इश्यूज. चलो, डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं. नेक्स्ट दो गाने रेडी है आपके लिए.

the clock is at 10:41 p.m. अगर आप ड्राइव कर रहे हो, it was a time update. So हम बात कर रहे थे हमारे फनी से छोटी मोटी देसी आदतों के बारे में. So आपने कभी delivery tracking की है? Like delivery tracking obsession. I guess हम सबको ये obsession है. अब अगर बात करें delivery tracking की, order place करते ही आप खोलना start कर देते हो. Is it out of delivery? Is it out for delivery? आप मैप पे राइडर को ऐसे ट्रैक करते हैं जैसे लाइव क्रिकेट मैच. अरे ये क्यों इतना देर कर रहा है? अगर ये 10 मिनट देर कर दिया तो ओके, मैं ये रीज़न बनवा दूंगा कि इसने लेट मुझे आके दी है. तो ये सब हमारी ऐसे छोटी मोटी आदतें विच मेक्स अस फील लाइक अभी मुझे चाहिए, अभी मुझे करना है. और जब अराइविंग इन 2 मिनट्स आता है तो डोर पे रेडी, और फिर राइडर कॉल करे, लोकेशन भेजो, पेशेंस नाम की चीज़ ही ख़त्म हो जाती है. और पार्सल मिलते ही एक्साइटमेंट 100 से 5 मिनट बाद नॉर्मल. लाइफ भी ऐसे ही है, वेट ज़्यादा, मोमेंट शॉर्ट, बट शॉर्ट मोमेंट्स ऑलवेज मेक थिंग्स मोर लवेबल.

You're listening to Dil Se Dal Is with Snigdha on Phanesha 104.9 FM पर. दोस्तों, अगर आपकी कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ कॉल इज़ एट 972-235-5555 पर.

वेलकम बैक डैलिस। पता है सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या होता है? पासवर्ड्स, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, 1 कैपिटल, 1 सिंबल। इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हैं, खुद ही भूल जाते हैं। फिर फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक मारो, ओटीपी का वेट करो, फिर नया पासवर्ड। और सिस्टम बोलता है ओल्ड पासवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड। अरे भाई, याद ही नहीं है ओल्ड पासवर्ड। और सब जगह सेम पासवर्ड यूज़ करते हैं, कन्विंसिंग लेवल मैक्स। ये कन्विंसिंग लेवल हम खुद के लिए करते। एंड भूले मत, इट्स 11:11, मेक अ विश गाइस। हमारी सिक्योरिटी लेवल 0 पे हो चुकी होती है, बट चलो कोई बात नहीं। पासवर्ड याद रखो या ना रखो, गाने तो एंजॉय करो।

It's 11:21 PM आप सुन रहे हैं दिल से डालिस विद स्निग्धा ऑन फनेशिया 104.9 FM पर. सो अगर हमारी बातें ऐसे ही चल रही तो और एक बात बता दूं मैं आपको. यूट्यूब ओपन करो एक काम के लिए और एक घंटे के बाद बेबी पांडा स्नीजिंग कंपिलेशन देख रहे होते हो. एल्गोरिथम भी ना आपको आपसे ज़्यादा जानती है. तुम्हें ये भी पसंद आएगा और ये भी, और आप बस स्क्रॉल करते ही जाओ. एक वीडियो से दूसरा, फिर तीसरा, और सडनली टाइम 2 बज गए यार. और नेक्स्ट डे कल जल्दी सो जाऊंगा, पक्का वाला प्रॉमिस. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस सर्कल नेवर एंड्स. सो चलिए इसी एंडलेस लूप को थोड़ा पॉज देते हैं विद आवर नेक्स्ट सॉन्ग्स.

0: Let's get back with a short break.
1: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
2: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
3: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
4: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.
5: जिंदगी के कई रंग Funasia Radio के संग।
0: Welcome back, Dallas. It's 11:30 PM. So हम बात कर रहे थे हमारे late night logics, unlogics, हंसी मजाक. So इसी बात पे मैं बात करना चाहती हूँ typing की. Typing मतलब जब WhatsApp में या Instagram में या अपने Snapchat में, Facebook, wherever, ये typing करके दिखता है ना, वो वाला scene ना full suspense movie लगती है मुझे. WhatsApp पे किसी का typing दिखे तो attention 100% उधर. क्या लिख रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, और फिर सडनली टाइपिंग गायब. और आप भाई मैसेज भेज या मत भेज, फिर 2 मिनट के बाद एक सिंपल ओके आता है. इतना बिल्डअप और रिजल्ट 0. और कभी आप खुद टाइपिंग स्टार्ट करते हो, फिर डिलीट, फिर टाइप, फिर डिलीट. ओवर थिंकिंग लेवल मैक्स. सिंपल बात को ऐसे बना देते हैं, फिर सेंड हाई नहीं करते. कम्युनिकेशन इजी हो जाएगी ना, पर कंफ्यूजन और भी इजी हो गया ना, यही तो हम चाहते हैं. चलो अब बिना टाइपिंग सस्पेंड की सीधा गाना सुनते हैं.

are listening to Dil Se Dallas with Snigdha on Phanisha 104.9 FM पर. So it's 11:41 PM guys. So हमारी बातें ऐसी होते रहेंगे अगले 20 मिनट तक. So I wanted to talk about weekend plans. It's already Wednesday. 2 days बाद weekend. So what are your weekend plans? पता है weekend plans कैसी बनती है देसियों में? इस वीकेंड हम ज़रूर प्रोडक्टिव रहेंगे. वर्कआउट, क्लीनिंग, सोशल लाइफ, सब्जी लाओ, घर का सब काम करो. बट रियलिटी, सोए, खाए, फ़ोन यूज़ किए और संडे नाइट गिल्ट मोड ऑन. नेक्स्ट वीकेंड पक्का ज़रूर करेंगे और वो नेक्स्ट वीकेंड कभी नहीं आता. प्लानिंग हम वर्ल्ड क्लास की करते हैं. एग्जीक्यूशन थोड़ा वीक होता है बट इसी में मज़ा भी है. बट ऑनेस्टली थोड़ा लेजी रहना भी ज़रूरी है. चलो द सॉन्ग्स आर फॉर यू, एन्जॉय करते हैं हम बस गाने सुनते सुनते.

ऑलराइट डैलस, इट्स 11:50 PM। तो हमारी एक कॉलर ने एक रिक्वेस्ट की है हमसे कि उन्हें नैना गाना सुनना है फ्रॉम दंगल फॉर फरीदा जी नैना।

And that's a wrap on night ki logical illogical baatein. Aaj koi heavy baat nahi, bas wo random se thoughts jo sabke dimag mein aate hain, but koi bolta nahi. Agar aap bhi kahin pe ye to mere saath bhi hota hai laga, then we are on the same team. Main hoon Snigdha aur ye tha Dil Se Dallas. Kal fir milenge, same time same vibe. Tab tak फ्रिज बिना रीजन के मत खोलना. डिलीवरी ट्रैक करते करते रहो और लाइफ को थोड़ा लाइटली लो. गुड नाइट डैलस. स्टे रैंडम.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे
3: सेम ऑर्डर अगेन सेम पिज्जा सेम टेस्ट सेम स्टोरी टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू एंड ट्रस्ट अस दिस इज नॉट योर रेगुलर स्लाइस Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanaa Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
2: Abhi baja aega na bhiro.
4: Apun bole to, full Bollywood dhamaka, Fun Asia pe.
5: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
4: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
5: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी।
6: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
7: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
8: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

रात गुजरते शायद थोड़ा वक्त लगे, हमें साथ रखिए। मंजिल तक पहुंचने में शायद वक्त लगे, हमें साथ रखिए। आपका साथी, आपका हमसफर, हर पहर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: ये क्या कर रहे हो चंदर? लाओ मेरा गीता बल्ला, लाओ।
1: गीतों से मियाँ तानसेन कानों में शहद तो भरा जा सकता है लेकिन पेट की आग नहीं बुझाई जा सकती, समझे?
0: तुमने फिर शुरू कर दी ना अपनी कीड़ों वाली बोली। जब देखो ये गिरा लगा रखते हो, भूख लगी है, भूख लगी है। लाओ दबाओ।
1: भूख दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है और इस बात को अपने दिल से तुम भी मानते हो और इसीलिए अपना और मेरा हिस्सा जेब में दबाए रखते हो। मैं तुमसे अपना हिस्सा मांग रहा हूँ।
0: कौन सा हिस्सा? 2 रुपए थे उसमें से 1 रुपया तुम्हें दे दिया है। दिया है कि नहीं?
1: दिया। मैं कहा इनकार कर रहा हूँ। अब 1 रुपया तुम्हारे पास बचा है कि नहीं?
0: बचा है।
1: और उस 1 रुपए में से मैं 50 पैसे मांग रहा हूँ, अपना हिस्सा। 50-50 हमारा परमानेंट एग्रीमेंट है कि नहीं?
0: तेरी तो भूख की ऐसी की तैसी।
2: कमाल के लोग रहते हैं तुम्हारे पड़ोस में, गा रहे थे तो महसूस होता था किसी ने अमृत पिला दिया हो मेरी कविता को। लड़ने लगे तो मरने मारने के लिए तैयार हो गए।
3: पुराने दोस्त हैं, साथ रहते भी हैं, रोज लड़ते भी हैं, मगर दोस्ती में कभी फर्क नहीं आता।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

Thank you for tuning in to 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है. मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं. छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे. जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट. सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: 104.9 FM. Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop infotainment.
1: साथी जिंदगी में करते रहते हो लेकिन काम में तुमने आज तक नहीं की आदत नहीं है तुम्हें

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: है।
1: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
2: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
3: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे
4: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर
5: द फ्लेवर लाउंज वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस
4: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर
5: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल
6: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

playing the best tunes in all of Dallas. Fun Asia Radio, 104.9 FM.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे
4: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
5: अच्छा मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग डायमंड रिंग्स पेंडेंट्स इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर चाहे प्रपोजल हो वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो अब शाइन डबल विद इन बजट लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग
6: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री हॉरोस्कोप रीडिंग वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं प्रेम धन आरोग्य कोर्ट के मामले और बुरी नजर हर समस्या का समाधान यहां मिलता है साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8 6 8 2 3 4 6 4 6 1 1 और विजिट masterjoshiram.com अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई
7: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली ऑन रिसर्च में वेरी
8: हाय दिस इज दीपिका पादुकोण एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: KZMP 104.9 FM. Keep listening to Fun Asia.
1: तुमने दुबई के चक्कर में हमसे बिया किया? हमसे कतई प्यार नहीं था।

म्यूजिक MG तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शौके शौके इट्स ओके तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे
4: इट्स ट्रू हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
5: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

Bollywood, Tollywood, Lollywood. 24 Karat Pure on 104.9 FM.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी बजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
4: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है, पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर। एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर।
5: द फ्लेवर लाउंज वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस।
4: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज, अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर।
5: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल।
6: Hi, this is Sefali Khan. You are listening to Fun Asia Radio

0: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 एफएम।
1: हमारे साथ मेवाड़ चलेंगे पद्मावती, हमारी पत्नी बनकर।

0: सिर्फ हवा में नहीं, स्टाइल में भी उड़नी चाहिए। बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट। बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस। Mention Funasia and get 10% off on your hairstyle service. Call Amreen at 214-909-6601.
1: Or visit their Instagram, Amreen Salon, located at Allen and Frisco.
0: Amreen Salon, style that moves with you.
2: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Funasia Radio.

0: Phoenicia Radio 104.9 FM. 104.9
1: FM. This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: अच्छा मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग डायमंड रिंग्स पेंडेंट्स इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर चाहे प्रपोजल हो वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो अब शाइन डबल विद इन बजट लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग.
9: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
10: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
9: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
10: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
11: बेटा इतनी देर से बैठे हो होमवर्क हुआ
12: मम्मा कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है
11: रोज का सेम प्रॉब्लम
13: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे लुमडी लर्निंग सेंटर जहाँ बच्चे रटते नहीं समझते हैं लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को प्रॉस्पर एंड मैकिनी आईएसडी स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है
14: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 टू 13 कंटीन्यूअस फीडबैक ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग
13: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को
15: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फनेशिया गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ लुमडी लर्निंग सेंटर बिल्ड मास्टरी अनलॉक पोटेंशियल.
16: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
13: Excuse me. It's called being loyal.
16: It's called being predictable.
13: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
16: And what's so special at Neon Cactus?
13: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
16: Not bad.
13: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
16: Okay, this I didn't expect from you.
13: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
17: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing, no hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform real-time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
18: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर
19: द फ्लेवर लाउंज वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस
18: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर
19: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल
3: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
20: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
3: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
20: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
21: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
20: भाई ऑफिस लॉग आउट हो जाता है पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता।
21: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज, दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स।
20: कितने एप्स ट्राई किए यार, बट
21: देन डोंट ट्राई अलोन, एक्सपीरियंस इट एट ओशो ट्रांसफॉर्मेशन रिट्रीट।
15: मे 14th टू मे 17th, अ 3-डे इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रीकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स। रजिस्टर नाउ एट oshoyuniversal.org. पॉज द नॉइज, मीट yourself.
22: Ladies and gentlemen, welcome to the show on this lovely Thursday morning. It's the 7th of May. Sabse pehle tareef us upar wale ki jisne duniya banayi, chand sitare banaye, zameen aasman banaye, insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. Usi upar wale ki tareef hai jisne mujhko, aapko aur ye sari kainat ko इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एज वी गेट स्टार्टेड एंड वी स्टार्ट आवर प्रोग्राम विद दिस लिटिल प्रेयर, टुडे लेडीज एंड जेंटलमैन इज नेशनल डे ऑफ प्रेयर।

0: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रिफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री, NMLS 2025289, लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सास। ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल, इक्वल हाउसिंग लेंडर।
1: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है, पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग स्पेशल फॉर हर। एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर,
2: द फ्लेवर लाउंज वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस।
1: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज, अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर।
2: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल।
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: सब कुछ साफ रख सकते हो
8: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
9: क्योंकि ये कौन बोला?
8: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
10: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
11: बेटा, इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
12: मम्मा, कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है।
11: रोज का सेम प्रॉब्लम।
13: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। लुमडी लर्निंग सेंटर, जहाँ बच्चे रटते नहीं समझते हैं। लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मैकिनी ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
14: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 to 13, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग।
13: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
10: कॉल 9726661181 और मेंशन करें फाइनेंशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
1: Immigration is a serious concern for our community. And when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing

this track called Ibadatein. By Rito Reba.

एंड वील बी जस्ट ऑल राइट. आई टेल यू, जब वो थोड़ी सी धूप निकलती है ना, धूप के साथ बहुत सारा होप निकलता है, मुझे ऐसा लगता है. दैट्स द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग टुडे मॉर्निंग. द वाइब इज एब्सोल्युटली कूल, लेडीज एंड जेंटलमैन, मोस्ट लिटरली, क्योंकि वी हैड अ वेरी कूल स्टार्ट टू द डे. कुछ 40s और 50s में टेम्परेचर था, लेकिन आगे चल के इट विल राइज बैक इन टू द 70s. और ये सारा वेदर अपडेट कमिंग अप फॉर यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट. आज की तारीख मिला लीजिए 7th of May, और वक्त भी मिला लीजिए, हमारी स्टूडियो के घड़ी में बजे हैं इस वक्त 15 minutes past 10, एंड यू आर ट्यून्ड इनटू गपशप गली विथ मी टू राइट हियर ऑन फनेशिया रेडियो 104.9 FM.

दूसरों से प्यार का इजहार हम कितनी जल्दी से कितनी आसानी से कर देते हैं, लेकिन खुद से प्यार का इजहार इतना वक्त क्यों लगता है हमें समझने में कि भाई खुद का भी ख्याल रखना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए। जैसे कि एयरप्लेन्स में होता है ना कि इफ़ देर इज़ अ टर्बुलेशन और वो जो ऑक्सीजन मास्क गिरता है तो कहा जाता है कि किसी और को हेल्प करने से पहले खुद की आप मदद करें एंड पुट दैट ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट एंड देन गो अहेड एंड हेल्प अदर्स टू डू एग्जैक्टली दैट। वैसे ही ये जो इवेंट है ये आपके इनर सेल्फ का से रीकनेक्ट करने के लिए आपके लिए बहुत ही कमाल का इवेंट है। मई 14th टू मई 17th लेडीज एंड जेंटलमैन 3-डे इमर्सिव जर्नी दैट यू कैन हैव एट दिस वेन्यू एंड ये oshoyuniversal.org पे जाकर आप रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा। दिस इज ओशो यूनिवर्सल रिट्रीट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जहाँ पर आप अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं, जो कोई माइंड ब्लॉक्स हैं, इमोशनल ब्लॉक्स हैं, उन्हें आप क्लटर फ्री कर सकते हो और जैसे कि मैंने कहा ना अपने आप से रीकनेक्ट कर सकते हो। तो ये पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक जो यूज़ करते हैं उससे आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपने बारे में, कुछ क्लैरिटी मिलेगी अपने बारे में। इफ़ यू आर सीकिंग एग्जैक्टली दैट देन प्लीज़ गो अहेड एंड रजिस्टर एट oshoyuniversal.org फ्रॉम मे 14th टू मे 17th। डू मार्क इट ऑन योर कैलेंडर्स। दिस इज गपशप गली विथ मी टू

0: चिली स्टार्ट टू द मॉर्निंग दैट वी हैड लेडीज एंड जेंटलमैन. आज का मौसम क्या रहेगा बताने वाली हूँ गपशप गली में राइट नाउ राइट हियर ऑन फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. तो ऐसा है जो कोल्ड स्टार्ट मिला आगे चल के हमारा टेम्परेचर कुछ 70s मिड 70s तक पहुंचेगा एंड दैट इज ए प्लेजेंट वेदर दैट वी आर गोइंग टू हिट टूडे. सो येस देर आर रेन चांसेस कुछ जो कि यू नो ऑल ओवर तो नहीं मिलेगा हमें नॉर्थ टेक्सस में, लेकिन कुछ आइसोलेटेड storms yeah pop up shower one or two that you can see here or there mainly towards the south of Dallas Fort Worth and that is on Friday. Ladies and gentlemen, kal ki baat kar rahi hu yahan par aur aaj ka din kafi acha milega aapko and the temperatures are definitely significantly up from yesterday that we are loving absolutely aur wo dhoop nikal aayi hai wo bhi hame bada acha lag raha hai. Looking ahead to Mother's Day weekend, our best chance for scattered storms arrive on Sunday as a cold front moves through. और एज ऑफ नाउ कोई सिवियर वेदर तो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हम जरूर बताएंगे आप.
1: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8 6 8 2 3 4 6 4 6 1 1 और विजिट masterjoshigram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई.
2: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली ऑन रिसर्च में वेरी.
3: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा.
4: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
5: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
6: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motor Works in Richardson, expert European auto care, precision diagnostic and top tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motor Works, engineered for excellence.
7: Chicken, banana. Chicken, banana?
8: Bro, banana nahin. Banana. मतलब मेक द चिकन राइट.
9: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
10: कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
11: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं.
12: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो.

मैं आपको देती हूँ ना पता, एक्चुअली हायत रीजेंसी फ्रिस्को इन डैलस, दैट शुड बी योर डेस्टिनेशन ऑन May 9th एंड और May 10th, और अगर आप दोनों दिन जाना चाहते बेशक जाएं. दिस इज़ grahapravesh.com जो लेकर आए हैं आपके लिए इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट और बाय होम बैक इन इंडिया, तो ये आपका बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. चाहे आप अभी तुरंत खरीदना चाहते हो या फिर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या खरीदना चाहते हैं, तो दैट्स ए ग्रेट ग्रेट प्लेटफॉर्म दैट यू आर गेटिंग, क्योंकि आपको मिलता है मौका कि आप टॉप बिल्डर्स से मिले फ्रॉम हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, पुणे, दिल्ली, NCR, जो कि 200+ प्रीमियम प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, जो लग्जरी अपार्टमेंट्स, विलास, प्लॉट्स और फार्मलैंड्स देखने का आपको अपॉर्चुनिटी देगा. एंड यू कैन मेक योर डिसीजन देन एंड देयर और वेट इफ यू विश. लेकिन ये है कि आपको मिलता है मौका टू टॉक टू द बिल्डर्स वन ऑन वन एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड द लॉजिस्टिक्स बिहाइंड इन्वेस्टिंग और बाइंग. ये सारी चीज़ें समझने के लिए ना, अगर आपको खुद कहते हैं ना हॉर्सेस माउथ अगर पता चलता है, तो इससे अच्छी बात तो क्या ही हो सकती है, राइट? सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आई हाईली रिकमेंड फॉर ऑल ऑफ यू टू गो एंड रजिस्टर नाउ इटसेल्फ एट grahapravesh.com. इट इज़ हैपनिंग दिस वीकेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, एट हायत रीजेंसी फ्रिस्को इन डैलस. इट इज द एनुअल इवेंट दैट इज कमिंग अप फॉर यू, इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो, राइट हियर इन डैलस, लेडीज एंड जेंटलमैन. वंस अगेन, दिस इज गपशप गली विथ मी टू. कंटिन्यू लिसनिंग टू माई शो, क्योंकि बहुत सारी मज़ेदार सी चीज़ें भी होंगी, इन्फॉर्मेटिव भी होंगी, और म्यूजिक तो है ही है.

इतना करो ना इंतजार, इस गाने में मेरे ख्याल से कुछ ऐसा था कि मैगी द कैरेक्टर ऑफ रेवती, शी केप्ट ऑन वेटिंग फॉर सलमान खान टू कम एंड सलमान खान डिडंट कम एंड शी केप्ट ऑन वेटिंग थ्रू द डे एंड इवनिंग, और रात को जाके जब सलमान खान को याद आता है, समथिंग लाइक दैट, और इसी से गाना ये शुरू होता है और प्यार मोहब्बत हो जाता है, ऑल ऑफ दैट हैपन्स. लेकिन इंतजार के बारे में आपका क्या कहना है? यार मैं ना डॉक्टर्स ऑफिस में वेट से ना मुझे बड़ी घबराहट होती है, इसलिए मुझे डॉक्टर्स ऑफिस जाने में घबराहट होती है, बिकॉज मेरी मतलब बैड लक ही खराब है कि भाई जब भी मैं जाती हूँ ना, मेरे फैमिली मेम्बर्स जब जाते हैं उनकी फटाफट हो जाती है, लेकिन जब मैं जाती हूँ मुझे पता नहीं कितना लंबा वेट करना पड़ता है, घंटे कभी कभी डेढ़ घंटे, एंड इट इज सो सो इरिटेटिंग समटाइम्स, यू नो, बिकॉज हम अगर डॉक्टर्स ऑफिस अगर लेट पहुंचे तो ऑब्वियसली हमारा अपॉइंटमेंट या तो पीछे कर दिया जाएगा या रीस्केड्यूल कर दिया जाएगा, राइट? लेकिन डॉक्टर्स जब लेट होते हैं, इमरजेंसी मुझे समझ में आती है, लेकिन जब फिजिशियंस लेट होते हैं ना, ये बात मेरी कुछ हजम नहीं होती है. क्या कहना है आपका? यू आर लिसनिंग टू फनीश रेडियो 104.9 FM. दिस इज गपशप गली विद मी टू.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे
4: प्रितेश कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा
5: अरे रिलैक्स सब तुम्हारा ही तो है
4: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा
5: वेट व्हाट
6: यस अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है
7: हाय दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग
6: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए कॉल 669-243-5799 दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन
8: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती उनके लेवल्स होते हैं लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल स्लो कुक्ड कीमा मटर रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस
6: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ फ्लेवर हम संभाल लेंगे
9: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
10: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
11: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
14: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
16: डूड लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
17: फ्रंट पेज का तो पता नहीं पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है
16: कैसे
17: पेज 3 ईटरी
16: नो नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन
17: डूड इट्स पेज 3 स्टार्ट विद द बार सिग्नेचर कॉकटेल्स क्लासिक पोल्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग एवरी एपेटाइट
16: मतलब ग्रेट फूड ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी यानी कि मैं
18: पेज 3 ईटरी ईट सिप गॉसिप रिपीट
19: भाई ऑफिस लॉग आउट हो जाता है पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता
20: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स
19: कितने एप्स ट्राई किए यार बट
20: देन डोंट ट्राई अलोन एक्सपीरियंस इट एट ओशो ट्रांसफॉर्मेशन रिट्रीट
21: मे 14th टू मे 17th अ 3-डे इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रीकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स रजिस्टर नाउ एट oshoyuniversal.org पॉज द नॉइज Meet yourself.
22: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
23: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा
24: डालस की धड़कन 104.9 FM फन एशिया रेडियो

यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी टू. और आज के दिन यानी 7th ऑफ मे 165th बर्थ एनिवर्सरी है रविंद्रनाथ टैगोर की. एंड मी बीइंग अ बॉन्ग एंड नॉट डूइंग एनी सेगमेंट ऑन हिम इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का ये गाना और ये लाइन अकेला चलो रे, जो बांग्ला नहीं बोल पाते हैं वो भी जानते हैं, और इसका ये जो इंस्पिरेशन है कई लोग ड्रॉ करते हैं. एंड दैट इज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको मैं आज सेलिब्रेट करना चाहती हूँ इस सेगमेंट में. क्या है ना कि इनके म्यूज़िक के बारे में हम सबको पता है, जब हम द बार ऑफ बंगाल या विश्व कवि कहते हैं ना, तो हम सिर्फ एक कवि की बात नहीं करते हैं, हम एक कविता, वो जो एक फील्ड है उसकी बात नहीं करते हैं. एन एब्सोल्यूट पावर हाउस दैट ही वॉज, एक पोएट, नॉवलिस्ट, एसेज, फिलोसोफर, ए म्यूजिशियन, एंड डेफिनेटली हु हैज़ इम्पैक्टेड द सोशल यू नो साइड ऑफ द कम्युनिटी ऑल्सो. और उन्हीं के बारे में ये सेगमेंट मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ. मैं अगर मतलब आपसे ये कहती हूँ कि उन्होंने अपनी पहली शॉर्ट स्टोरी जो है 16 साल की उम्र में लिखी, तो यू कैन रियली इमेजिन कि क्या किस किस्म की उनकी सेंसिटिविटी या सेंसिबिलिटी थी कि वो उस उम्र में लिख पाए, विच बिकेम वेरी पॉपुलर. अगर मैं आपको उनकी लिखी हुई कुछ कहानियों के नाम बताऊं, तो आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू रिलेट इट टू योर स्कूल और कॉलेज टाइम्स. जब आपने ये शायद पढ़ा होगा, काबुली वाला आप ले लीजिए, एंड देयर इज अतिथि एंड मेनी अदर स्टोरीज. उनके शेयर वॉल्यूम ऑफ वर्क जो अगर आप देखते हो ना, इट्स माइंड ब्लोइंग. उन्होंने कुछ 2000 से ज्यादा गाने लिखे हैं जिसे रविंद्र संगीत कहा जाता है, और उससे इंस्पिरेशन लेकर कई और लोगों ने अपने भाषा में ये गाने बनाए हैं. तो मैं बॉलीवुड की भाषा जो है, जो रविंद्रनाथ के गानों से इंस्पायर्ड रही है, वही कुछ गाने आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ इस सेगमेंट में. आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली इन्जॉय. एंड ऑफ कोर्स अगर मैं रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रही हूँ, तो गीतांजलि की बात होनी ही चाहिए. वो खूबसूरत कलेक्शन ऑफ पोएम्स जिसने 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज दिलाया, और ये तो हम सब डीपली जानते हैं कि ही इज़ द ओनली पर्सन जिसने दो देशों के लिए नेशनल एंथम्स बनाए, इंडिया के लिए जनगण मन और बांग्लादेश के लिए आमार सोनार बांग्ला. तो एक और गाना मैं लेकर आऊँ जो उनकी एक बांग्ला गान से इंस्पायर्ड था, पागला हवा, दैट्स द नेम, और उसी का ये हिंदी गाना आपको मिलेगा इन दिस जैकी श्रॉफ, मनीषा कोइराला एंड नाना पाटेकर फिल्म युग पुरुष.

Akriti Kakkar has also sung this song. Unhone literal translation kiya hai from Bangla into Hindi. Pagli Hawa karke unhone gana gaya hai. Jo Rubindranath ke gaane se inspired hai. Pagla Hawa se inspired hai. If you are interested, please go ahead and listen to that also. Very sweet melody that it is. Aur ek typical jo ye music aapko milta hai na, it is the signature kind that you will find in lots of Bangla music. And Rubindra Sangeet ki baat ho rahi thi aur kuch aise gaane jo ki inspired hoye hain Rabindranath Tagore ki गानों से उन्हीं में से कुछ मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ. एक और प्ले करना चाहती हूँ यहाँ पर. इट इज़ ए वेरी डिफरेंट यू नो सॉर्ट ऑफ चॉइस ऑफ म्यूजिक दैट आई एम ब्रिंगिंग फॉर यू एंड आई होप यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट जस्ट फॉर द फैक्ट दैट इट इज़ रवींद्रनाथ टैगोर हु हैड रिटन. एंड उनके गानों से कितने सारे और गाने क्लासिक गाने जो इंस्पायर हुए हैं हमारी हिंदी सिनेमा में. और एक और जो मैं आपके लिए प्ले करने चली हूँ, एस डी बर्मन टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज सॉन्ग एंड दैट सॉन्ग वॉज जोदी तारे नाई चीनी को. That's the title of the Bengali song, which is here in the voice of Lataji and Kishore Kumar, that I'd love to play for all of you. 165th birth anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore.

That amazing song, ladies and gentlemen, inspired by a song that was written by Rabindranath Tagore. और उन्हीं को celebrate कर रहे हैं इस segment में. और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर special जो चल रहा है इस segment में, हम उनकी poetry की बात briefly मैंने I just touch and go type जो मैंने किया, कुछ music जो play कर रही हूँ, उनकी philosophy की बात हम सब जानते हैं कि a philosophical man that he was, a legend that he was. But let me tell you something that will completely blow your mind, and it is for the people who are probably not aware of his, you know, kitchen stories. Yes, you heard that right. Tagore household, जिसे ठाकुर बाड़ी कहा जाता था, was famous for its wild culinary experiments. अब क्या है ना कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है, he was a massive foodie. वो दिन में traditional बंगाली खाना खाते थे मज़े से, और शाम को European pies, steaks और cutlets enjoy करते थे. और उनकी wife का नाम रणालिनी देवी, एक exceptional cook थी. और उनके वो सारे अजीबो गरीब ingredient combinations जो वो suggest करते थे, वो incorporate करती थी, वो उनके लिए एक मज़े की बात होती थी. एंड टैगोर जो है

अपने दोस्तों को बुलाते थे और उनकी शाम की एक बैठक होती थी, खाम ख्याली सभा यानी कि विम्सिकल गैदरिंग विच ही यूज टू होस्ट। और उस गैदरिंग में एक स्ट्रिक्ट रूल था कि हर बार खाना बिल्कुल अनकन्वेंशनल और आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए। अब ये जो माइंड ब्लोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें से एक जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। इट इज प्याज और पायश विच इज बेसिकली प्याज और खीर। जी हाँ, वो कॉम्बिनेशन उनके घर में प्याज को ऐसी टेक्निक से धोकर इस तरह से पकाया जाता था कि बनने के बाद फ्रेश लीची जैसा एक फ्लेवर आता था उसमें। सो कैन यू इमेजिन द क्रिएटिविटी ऑफ हिज वाइफ इज वेल, मृणालिनी देवी। और इतना ही नहीं, उनके मेन्यू में कोचू यानी कि टारू रूट जो बोला जाता है ना, उसके जलेबी बनती थी, मीट की फिश करी बनती थी। ऐसी क्रेजी फ्यूजन उनकी कुछ जो एक्सपेरिमेंटल रेसिपीज फ्रॉम हिज किचन दैट यू माइट हैव हर्ड और यू केम टू नो टुडे। आज 165th बर्थ एनिवर्सरी पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल लॉस्ट एंड रेयर रेसिपीज जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इन भूली बिसरी रेसिपीज को हिस्टोरिकल टेक्स्ट से वापस ढूंढ कर ला रहे हैं। एंड हाउ अमेजिंग इज दैट कि आप वो रेसिपीज ना सिर्फ टेस्ट कर सकते हैं लेकिन उन इमोशंस को भी शायद कहीं फील कर पाए। आज जो कि हम बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की ऑन हिज 165th बर्थ एनिवर्सरी, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिक्रिएशंस ऑफ हिज सॉन्ग विच हैज़ अ रिफ्लेक्शन, नॉट एंटायरली डन बट हैज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज सॉन्ग, तोमार होलो शुरू आमार होलो शारा। फ्रॉम दैट राजेश रोशन वॉज इंस्पायर्ड टू मेक दिस वन हियर।

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
3: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
4: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
3: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
5: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
6: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338। The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
5: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
8: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
5: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
10: इन प्लेनो।
9: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: आर यू अ सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर एंड हैव प्रॉफिट्स? स्ट्रेस्ड आउट बिजनेस के कुछ सिम्टम्स है, प्रॉफिट्स है बट नो कैश लिक्विडिटी। हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
11: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
6: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
11: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit indianattirefrisco.com.
12: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
6: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
13: इंडिया में घर खरीदना या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना अब हुआ और भी आसान। गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो अब फ्रिस्को में। मिलिए मुंबई, पुणे, दिल्ली NCR, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के टॉप डेवलपर्स से। सब एक ही छत के नीचे। 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कीजिए और अपने प्लान्स के हिसाब से सही प्रॉपर्टी चुनिए। आइए 9th एंड 10th मई को हयात रेजेंसी फ्रिस्को डलास में, सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक। एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। माई स्क्वायर फीट प्रेजेंट्स सबसे बड़ा इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो।
14: हेलो गाइज, दिस इज मी किंजल दवे एंड यू आर लिसनिंग एंड वॉचिंग फनेशिया रेडियो।

हम मिलते हैं यहाँ फनीश रेडियो 104.9 FM ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. ये है गपशप गली विथ मी टू और ये जो बैरिटोन आवाज आप सुन रहे थे ये है मोहन कनन की और ये वो हैं जो कि जिन्होंने बॉलीवुड में भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया और इंडिपेंडेंट म्यूजिक में भी इनका शानदार कंट्रीब्यूशन रहा है और ये लीड वोकलिस्ट थे ऑफ दैट वेरी पॉपुलर इंडियन रॉक बैंड जिसका नाम अग्नि. और उनका एक और गाना लेकर आऊँ आप लोगों के लिए जस्ट for all of you to get the flavor of it. लेकिन सिर्फ फ्लेवर ना लें आप इस अगले अनाउंसमेंट्स के साथ जो है ना जितने भी स्टोर ओनर्स हैं आप जाकर वहाँ पे पूरा फ़ायदा उठाएं. आई एम टॉकिंग अबाउट रवि इम्पोर्ट्स वेयर हाउस. अब ये सारे स्टोर ओनर्स के लिए जो मैंने कहा ये समर किक ऑफ जो है इट इज़ बैक फॉर ऑल ऑफ यू. तो मार्क योर कैलेंडर्स फॉर जून 3rd एंड 4th सुबह के 9 बजे तक से लेकर शाम के 5 बजे तक. वंस अगेन 9 AM टू 5 PM. दिस ईयर इट इज़ गोइंग टू बी बिगर फॉर यू बेटर फॉर यू. द एंटायर वेयर हाउस टर्न्स इनटू ए ट्रॉपिकल एक्सपीरियंस. मतलब क्रेजी डील्स होंगी स्टोर ओनर्स के लिए. न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, फ्री गिफ्ट्स रहेंगे पूरे दिन और आप वेंडर्स के साथ भी मिल पाएंगे. यू कैन डिस्कवर बेस्ट सेलर्स एंड स्टॉक अप लाइक नेवर बिफोर. दिस इज रवीज इम्पोर्ट warehouse that I'm talking about which is on Harry Hines Boulevard in Dallas. Aap zarur check out kare inki website bhi. I'll give you the website also. It's shopravis.com. Once again it's S-H-O-P shop ravis.com. Zarur jaiyega store owners ke liye ye khas suggestion aur recommendation hamari taraf se. Filhal this next track.

कुछ हटके प्ले करने की कोशिश में गॉट दीज बैक टू बैक मोहन कानन सॉन्ग्स फॉर ऑल ऑफ यू. आई होप यू एंजॉयड इट. कुछ हटके की बात कर रही हूँ ना, कुछ हटके ही हम पहनने की कोशिश करते हैं. आपने पूरे हफ्ते कई बार ना प्लान किया होता है कि एक परफेक्ट आउटफिट जो आप डिसाइड करते हो, यू नो, कि किसी भी अगर वेडिंग में जा रहे हो या कुछ एक स्पेशल ओकेजन हो, कोई भी कुछ स्पेशल जगह जा रहे हो आप, आपने वो अपना आउटफिट डिसाइड किया हो और अचानक जब उस इवेंट पे आप जाते हो, पता चलता है कि सामने वाले ने एग्जैक्टली वही पहना हुआ है जो आपने पहना है. ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? आई रियली लाइक टू नो दिस, क्योंकि कल मैं जो पहन के आई थी, मेरे बाद आते हैं सिमरन, शी इज़ आ वेरी न्यू आरजे हियर, तो ज़रूर सुनिएगा उनको. फर्स्ट ऑफ ऑल 12:30 से 2:30 तक, 2:30 तक. बट शी टोल्ड मी दैट शी हैज़ एग्जैक्ट सेम ड्रेस. नाउ ऐसा हो सकता है, राइट, किसी दिन हम दोनों सेम चीज़ पहन के आ गए. अगर आपके साथ अगर ऐसा हुआ हो ना, तो ज़रूर मुझे बताइएगा. आई'd लव टू नो, लेडीज एंड जेंटलमैन. 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो. और आप लोग जो शेयर करोगे, आप लोगों में से एक किसी को मिलेगा फ्रॉम नियॉन कैक्टस, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वेरी स्पेशल गिव अवे दैट आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू. एक ऐसी जगह जो बिल्कुल हटके है और जहाँ पे आपको मेक्सिकन खाने के साथ एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस मिलता है, जहाँ पे आपको ज़बीहा हलाल के लिए ऑप्शंस मिलते हैं और बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस मिलते हैं, सही बिल्कुल वाइब मिलता है, विच इज़ वेरी एनर्जेटिक वाइब दैट यू गेट देयर. यंग, कलरफुल, मॉडर्न वाइब जो आपको मिलता है, आपको साथ में मिलता है हैप्पी आवर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. आपको मिलता है रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स, आपको मिलता है क्यूरेटेड कॉकटेल्स, और आप में से किसी एक को मिलेगा $20 का डिस्काउंट ऑन डाइन इन अगर आप मुझे सही जवाब देते हैं. सही तो सही और गलत तो कुछ नहीं है, आई एम जस्ट टेकिंग योर आंसर्स, बट लेट्स डू दिस. हाँ, पहले ये गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपके कॉल्स लेते हैं. अगर आपके साथ हुआ है कि जो आप पहन के गए हो कहीं पर भी, वो कोई किसी और ने भी एग्जैक्टली सेम चीज़ अगर पहना हो, अगर आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा. लेट्स हियर इट.

0: A burning question for all of you. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं पर गए हो और पता चला कि सामने वाले ने exactly same चीज पहना हो, या आपके पहचान वाले या strangers उन्होंने exactly same चीज पहना हो जो आपने पहना है. मेरे साथ एक कॉलर है इस वक्त, एंड tell our listeners what's your name again and thank you very much for holding the line here.
1: You're welcome. My name is Meenakshi.
0: Meenakshi, so tell me, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या फील किया?
1: तो कुछ साल पहले मैं इंडिया गई थी और वहां से मैंने पहली बार चंडीगढ़, एक 16-17 जगह है, वहां से एक सूट खरीदा. बहुत सुंदर सूट था, मुझे मतलब येलो सूट था और उसमें ना ब्लू और मजेंटा एंड लाइक ब्यूटीफुल कलर, उसमें बुटियां लगी हुई थी.
0: हाँ, हाँ.
1: बिल्कुल वाइब्रेंट, यू नो, जैसे पंजाब के सूट होते हैं. आई डोंट यूजुअली गेट वाइब्रेंट क्लोथ्स, राइट? और मैं आई, बड़े शौक से लेके आई, सूट बनवाया चंडीगढ़ में, फिटिंग विटिंग बिल्कुल स्टिच बनवा के आई. यहाँ पे आई, मूवी देखी मैंने, एक मूवी देखी और उसमें बिल्कुल डिट्टो कॉपी, वही कढ़ाई,
0: वही सूट
1: एग्जैक्टली. और जो सलमान खान की मूवी थी,
0: कौन सी,
1: उसकी सिस्टर थी और मैं नाम भूल गई अब, आई थिंक इट वाज, पुरानी हो गई है अब तो.
0: अच्छा, लेकिन याद करके कभी बताना यार. आई वुड लाइक टू, नाउ दैट आई हैव इमेजिन्ड द येलो एंड द ब्लू दैट यू मेंशन, आई'd लाइक टू सी कि वो सूट क्या था. ठीक है, तो कभी याद है तो जरूर बताना.
1: सूट था और वो सूट एक्चुअली मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि मुझे ये सूट चाहिए, वो इतना पसंद आया,
0: ये मतलब सम्मान,
1: लाइक आई वाज लाइक मेरा सूट मूवी में है.
0: इससे अच्छी बात तो क्या ही हो सकती है. वेल, थैंक यू सो मच मीनाक्षी फॉर योर कॉल हियर. And 972-235-5555 number in the studio. We are taking your calls. अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ पहन के गए और exact same thing किसी और ने भी उस जगह पे पहना हो, you are live on air. बताइए.
2: Hello, नमस्ते जी.
0: नमस्ते जी, क्या हाल है आपके, क्या नाम है?
2: हाँ, मेरा नाम डिम्पल है. तो ये किस्सा पुराना है, मेरी 8-10 साल पहले का.
0: हाँ.
2: तब मेरे बेटे को मैं डे केयर में छोड़ने गई, तो वी यूज टू लिव इन नॉर्थ इन दैट फेज ऑफ लाइफ, यू नो, कपड़े कॉस्को से और ज्यादा खरीदते थे.
0: करेक्ट.
2: तो ऐसा हुआ, वो विंटर का जैकेट रहता है ना, तो मेरे बेटे का और उसके बेटे का सेम विंटर जैकेट था और हम दोनों मॉम का भी सेम था, सेम कलर, बिकॉज बोथ
0: बच्चे और माँ दोनों ट्विनिंग कर रहे हैं,
2: दोनों के, बिकॉज वो लिमिटेड क्वांटिटीज मिलती है, तो दोनों ने वहीं से दोनों का खरीद लिया था.
0: इट वॉज फनी. एंड एक्चुअली मतलब क्या करना चाहिए लोगों को, ऐसे अगर अपने मैचिंग कोई मिलता है तो छुपते रहना चाहिए कि एक साथ में सेल्फी लेना चाहिए आपको?
2: नहीं, तब तो सेल्फी इतना नहीं लेते थे, पर डेफिनेटली यू नो
0: एंजॉय
2: किया. यप यप, एंड किड्स आल्सो लाफ्ड, यू नो, बिकॉज़ दे वर एट दैट एज, कुड मेक आउट दैट वी आर वेयरिंग सेम, सो दे लाफ्ड एज वेल.
0: Thank you so much, Dimple, for sharing your story. 972-235-5555 number in the studio. Yes, you are live on air. Bataiye apna naam.
3: Hi, my name is Kanika.
0: कनिका और कुनिका, इज इट
3: कनिका?
0: तो बताइए कनिका, क्या हुआ है आपके साथ?
3: मेरे साथ तो अभी रिसेंटली हुआ है, मैं अपनी फ्रेंड के बर्थडे में गई थी.
0: हाँ,
3: अभी फेब में.
0: अच्छा.
3: और उन्होंने पार्टी रखी थी और वहाँ पे हम पहुंचे, तो मैं और मेरी फ्रेंड जो दूसरी वाली वहाँ पे जो इनवाइटेड थी,
0: हाँ,
3: हम लोग सेम.
0: ओह माय गॉड,
3: एवरीवन वाज लाइक, यू आर ट्विनिंग टुडे. नो, इट वाज नॉट प्लान्ड, इट वाज. और दोनों ने मेसी से सेम ड्रेस, सेम कलर, सेम साइज, सेम दोनों
0: आइडेंटिटी. व्हाट आर द ऑड्स ऑफ दैट? What are the odds of that? It is a memory that you will always remember. कि जब अगली बार आप ड्रेस पहनोगे ना, तो एक बार दिमाग में तो जरूर आएगा फिर से, है ना?
3: अरे, हम लोग कम्युनिटी में साथ रहते, तो अभी मिले थे, तो भी हम वो पिक्चर फोटो डिस्कस कर रहे थे.
0: How funny that is. How fun and funny.
3: ड्रेस की वजह से हमारी दोस्ती और अच्छी होगी, क्योंकि हम ट्विनिंग करे तो और हम लोगों ने बातें करी और मिंगल हो गए, तो दैट्स व्हाई इट वाज वेरी नाइस. सो
0: एंड थैंक्स टू द सोशल मीडिया, यू नो, वर्ड ट्विनिंग, इसके कारण तो आप बिल्कुल ट्रेंड में भी थे.
3: Yes.
0: Well, thank you so much. Thank you, Kanika. Going to my next caller. और इसके बाद कुछ और calls लेने के अगर time रहा तो जरूर लूंगी, लेकिन गाने के बाद. बताइए, आप अपना नाम बताइए और बताइए कि क्या, कब, कैसे हुआ. You are live on air. Can you hear me?
4: Yeah,
0: go ahead.
4: I can hear you.
0: Hanji. Kya naam hai aapka?
4: मेरा नाम प्रदीप है.
0: प्रदीप बताइए.
4: मेरे साथ अभी बहुत रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ. मैं और मेरी वाइफ दोनों एक मॉल में शॉपिंग कर रहे थे.
0: हाँ.
4: तो मैंने एक ड्रेस लिया हुआ था.
0: हाँ.
4: तो रिसेंटली तो मेरी वाइफ ने कहा वी आर बंगाली. तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ ने बंगाली मुझसे कहा कि इन बंगाली आई विल टेल यू इन हिंदी.
0: उन्होंने
4: कहा अरे देखो देखो अब आपके जैसा ड्रेस है.
0: अच्छा.
4: तो हाँ, और वो भाई साहब जो है वो बगल में खड़े थे. ठीक है.
0: ओ,
4: तो मैंने कहा अरे धीरे धीरे धीरे धीरे मत ऐसे मत बोलो. तो उस बंदे ने कहा एक्चुअली मैं भी बंगाली हूँ. तो उसने भी बंगाली में कहा आमियो बंगाली. मतलब मुझे भी समझ में आ गया आप क्या कह रहे हो.
0: क्या बोल रहे हो.
4: हम दोनों का
0: আর আমিও একেবারে ভালো করে বুঝে গেলাম হোয়াট দ্য ফিলিং মাস্ট হ্যাভ বিন. ভাই মে বি বং হু আর মতলব মজাই আ গয়া হোগা.
4: ইউ আর অলসো বং. ওকে. তো উনহোনে ইয়ে কাহা থা এ দেখো দেখো তোমার মতন জামা সেম সেম টু সেম তোমার জামা.
0: How hilarious that is. I mean, what should be one's reaction? Now I think ki ye bada funny sa hota hai. Unless it is an event jo ki mane bahut hi special ho, kuch wedding event ho, usme agar aap twinning kar rahe ho to pata nahi kitna maza aayega usko wo baat soch ke, kyunki mere saath ek bar aisa hua hai. But sir, thank you so much Pradeep for your call. Mere saath ek bar aisa hua hai ki maine ek saadi pehni thi aur wo jo saadi ka jo pattern tha na, that was in trend at that time. Aur isiliye guess what, I found somebody else wearing exactly the same pattern. जी हाँ, मेरे ख्याल से pattern जब कोई trend में जाता है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. कई copies मिल जाएंगे आपको around. लेकिन कोई style जब होता है तो you know it can be a different color, fabric, बहुत कुछ अलग हो सकता है. But pattern, never try to follow that, ladies and gentlemen. Alright, just randomly I'm going to pick Kanika here. Please give me a call back. You've won for yourself $20 का discount on dine-in at Neon Cactus.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Did you know LASIK is just one of six ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
7: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
6: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
8: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर
9: द फ्लेवर लाउंज वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस
8: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर
9: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल
10: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
11: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
10: That magic removal हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
11: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
12: बेटा इतनी देर से बैठे हो होमवर्क हुआ
13: मम्मा कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है
12: रोज का सेम प्रॉब्लम
14: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे Lumity लर्निंग सेंटर जहाँ बच्चे रटते नहीं समझते हैं Lumity का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को प्रॉस्पर एंड मैकिनी ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है
15: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 टू 13 कंटीन्यूअस फीडबैक ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग
16: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को
9: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फनेशिया गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
17: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
18: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
19: Whether it's a private housewarming, a family wedding reception, or a large convention, Bawarchi Biryani caters everything from live dosas and freshly grilled appetizers to chat stations and more. Bawarchi Biryani knows exactly how to make your event the talk of the town. Make your event memorable. Visit BawarchiCaters.com or call 496-995-9443.
20: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
21: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
20: Kya matlab?
21: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
20: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
21: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
20: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
0: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
1: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.
22: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेशिया रेडियो.

0: And it is Gupshup Gully with me too that you are tuned into Furniture Radio 104.9 FM पे मेरे शो को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अब क्या है ना, पिछले सेगमेंट में एक सवाल पूछा था, उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कॉल्स आते गए, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट एक्सटेंड इट अ लिटिल बिट मोर. आई हैव ऑलरेडी गिवन अवे द गिव अवे दैट आई हैड फॉर द लास्ट सेगमेंट टू कनिका, और अभी इस सेगमेंट के लिए मैंने सोचा लेट्स ओपन इट अप फॉर फ्यू मोर हु वुड लाइक टू शेयर देयर स्टोरीज, क्योंकि अगर इतनी सारी कहानियां हैं अबाउट ए ड्रेस और एन आउटफिट दैट यू हैव वोन, और पता चला कि जहां पर भी आप गए हो किसी और ने भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही चीज पहना हुआ है. अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, लेट्स कंटिन्यू दैट discussion right here. 972-235-5555 number in the studio. Now guess what, I have a giveaway for you from Fun Pizza Kitchen. $10 ka gift card hoga aapka. Dekhte hain hamare saath filhal kaun hai on air. Yes, tell me, what's your name?
1: This is Sona.
0: Tell me.
1: Hey, very interesting incident happened all the way in Greece, Santorini. We were traveling 4 years back.
0: Okay.
1: I was with my family, my husband and both kids.
0: Hmm.
1: And Santorini mein kya hota hai? Wo sare blue aur white structure hote hain.
0: Correct. Yes. Yes. Yeah.
1: To aur wahan pe vibe bhi hota hai ki log white pehante hain, blue pehante hain, aise pehante hain.
0: So
1: maine iske liye ek special dress leke rakhi thi. White nice one piece dress with blue embroidery on it. Aur bahut pyara कॉटन लिनन ब्लेंड था, तो मैं वो पहन के गई. और हम लोग वॉक कर रहे थे एक एंड से, तो दूसरे एंड से एक लेडी सेम ड्रेस पहन के हमको मिली. तो दैट इज अ कोइंसिडेंस, शी वाज फ्रॉम यूएस आल्सो, बट हाउ मेनी टाइम दैट हैपेंड.
0: सो
1: माय हस्बैंड टुक आवर पिक्चर एंड ही पोस्टेड ऑन फेसबुक दैट माय वाइफ फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट
0: चलो एक बार सोच इमेजिन किया जा सकता है कि एक ही दुकान से शायद लिया गया होगा, लेकिन डिफरेंट कंट्री इज ऑल टूगेदर अ न्यू लेवल ऑफ ट्विनिंग. हाँ, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी.
1: दैट वॉज द मोस्ट लाइक पिक्चर ऑन फेसबुक दैट टाइम एंड आई वाज लाइक गेटिंग अ लाफ आउट ऑफ इट दैट You know, I was so
0: amazing story, yeah, amazing. मुझे एक tie twinning की भी story मिली Mr. Ravi से. Thank you for sharing your stories. Yeah, मैं पूरे break पे ना actually मैं stories ही और सुनती जा रही थी, और मुझे नहीं पता था कि इतने लोगों के साथ ये ऐसा किस्सा हो चुका है. So, Sona, what I'm going to do is give you this $10 का gift card right here, right now. Please hold the line for me. Desi pizza का आप बिल्कुल मजा लें. And do remember the incident once again. All right?
1: Sure.
0: All right. Just hold the line for me and I'm going to play a song and come back and collect all your information off air. Kya baat hai, ladies and gentlemen. You know, एक मैथमेटिकल ऑड क्या ऑड्स क्या होते होंगे कि किसी के साथ आप ऐसे मैच कर जाओ बिल्कुल ना, जो आपने पहना उनका भी वैसे. इस पर ना काफी रिसर्च हुई है, उसके बारे में बताती हूँ मैं आपको, ठीक है? When I come back after this गाना.

0: All right, जी, और अब टाइम अलग आ गया है टू कनेक्ट विद यू कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण ब्रॉट टू यू बाय फन पिज्जा किचन. और जी, सबसे पहले आपको बताऊं कि पिज्जा खाने का तो हम सभी का दिल करता है, लेकिन मेरा खास तौर पे दिल करता है कि पिज्जा खाऊं तो कुछ देसी फ्लेवर हो जाए, कुछ देसी ट्विस्ट हो. और वो देसी ट्विस्ट आपको कैसे मिलेगा? जी हाँ, वो देसी ट्विस्ट आपको मिलेगा फन पिज्जा किचन से. फन पिज्जा किचन पे आप चाहे वेजिटेरियन लवर हैं या नॉन वेजिटेरियन लवर हैं, हर तरह का आपकी पैलेट को करते हैं satisfy fun pizza kitchen wale with some brilliant pizzas jaise ki achari paneer pizza for vegetarian lovers, tandoori chicken pizza for non-veg and much more. Check out their website funpizzakitchen.com aur unka menu dekhiye aur dekhiye ki aap next order kya place kar sakte hain. Aur ye $10 ka gift card aapko win karne ki opportunity de rahi hu ji. The only thing is you will have to go to Fun Pizza Kitchen located in Frisco to collect your $10 gift card. To agar aap ye trip le sakte hain aur $10 ka collect kar sakte hain card wahan jaake, to aap zarur participate kijiye. और वैसे भी कॉन्वर्सेशन कॉर्नर आपके लिए है, आपके और मेरे दरमियान एक गप्पे मारने का कॉर्नर है ये. खास तौर पे आपके लिए लेकर आती हूँ एवरी डे, एक टाइम निकालती हूँ कॉन्वर्सेशन कॉर्नर लाने के लिए ऑन फन पिज्जा, ब्रॉट टू यू बाय फन पिज्जा किचन राइट नाउ. अच्छा जी, खाने पीने की बात हो रही है तो सवाल खाने पीने के हिसाब से ही आएगा. आप मुझे ये बताइए कि सारे दिन की थकन के बाद जब आप घर आते हैं या कहीं भी, जब फर्ज कीजिए बाहर जा रहे हैं या जहाँ भी, वो कौन सा कंफर्ट फूड है जो आपका खाने को दिल करता है कि ये मिल जाए तो मज़ा आ जाए, सुकून मिल जाए. जैसे होता है ना, खाना हमेशा हमें सुकून देता है, और अच्छा खाना वही खाना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले, सुकून मिले. अगर खाना खा के दिल खराब हो रहा है तो फिर ज़रा कुछ गड़बड़ है, मेन्यू बदल दें या फिर कुक बदल दें या फिर दुकान बदल दें जहाँ से आप खरीद रहे हैं. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. दिस इज कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण ब्रॉट टू यू बाय फन पिज्जा किचन. $10 का गिफ्ट कार्ड आप जीत सकते हैं बाय पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉन्वर्सेशन कॉर्नर. कौन सा खाना है जो आपको एकदम से, जिसे कहते हैं ना कंफर्ट फूड है आपका, जिसे खा के मिलता है आपको सुकून, चाहे वो आप खुद बनाए या कोई और आपके लिए बनाए. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, अपना नाम बताइए.
1: हाय, माय नेम इज निहारिका.
0: निहारिका, हाय निहारिका, हाउ आर यू डूइंग?
1: आई एम गुड, हाउ आर यू?
0: वेरी गुड, थैंक यू. बताइए निहारिका, कौन सा ऐसा खाना है जो आपके लिए कंफर्ट फूड है?
1: मेरा कंफर्ट फूड दाल राइस एंड साथ में रायता.
0: दाल चावल और रायता,
1: रायता मेक्स मी फील सो हैप्पी.
0: ओके, और अच्छा मुझे बताइए कि ये जो दाल चावल है इसमें आप क्या एक्स्ट्रा डालती हैं? घी डालती हैं क्या एक्स्ट्रा ऊपर से, क्या डालती हैं?
1: घी.
0: अच्छा, घी डाल, ठीक है जी.
1: अच्छा, एक चम्मच घी मिल जाए, साथ में थोड़ा सा अचार मिल जाए तो क्या ही बात है.
0: ये आपने करी ना मुकम्मल बात, पहले अधूरी थी बात. पहले बात अधूरी थी, अब मुकम्मल. मैं वही सोच रही थी, ये कुछ तो बताइए, कोई अचार बताइए, कोई घी बताइए.
1: नहीं नहीं, एक चम्मच घी और साथ में थोड़ा सा अचार, वो भी मम्मी या दादी के हाथ का.
0: वाह, क्या बात है,
1: कम्प्लीट थाली.
0: अच्छा, ये आपने जबरदस्त बात की, थैंक यू निहारिका. सुनते रहिए, मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ एंड कीप लिसनिंग फाइनेंशियल रेडियो. You are live on air. अपना नाम बताइए.
2: निशा.
0: निशा.
2: uh-huh.
0: जी निशा, बता, आपने हाँ भी बिल्कुल माधुरी की तरह किया है.
2: I love.

0: brownie ice cream.
1: Brownie ice cream?
0: Mm-hmm.
1: Wow. It's
0: brownie sundae.
1: Okay, that is great. Yani ki aapka mood jo hai wo brownie matlab meetha khane se behtareen ho jata hai.
0: Definitely. Yep.
1: Acha ye jo aap brownie ice cream khati hain ye aap ghar pe bana leti hain ya matlab I mean as in ke bazaar se khareed ke le aayi aur ghar pe bana li ya you have to go somewhere and eat it?
0: I love brownie sundae. If you haven't tried, try it out.
1: Kahan ki dobara boliye?
0: Brahms.
1: Okay. Theek hai ji, bilkul sahi. Thank you Nisha for your call. Sunte rahiye, main bhi win announce karti hoon. Fani Ji Radio, you're live on air. What is your name?
2: My name is Birendra.
1: Is it Gajendra?
2: No, Birendra.
1: Bijendra.
2: He is in Bob.
1: Ji. Bataiye, aapka comfort food kya hai?
2: दिन भर की मेहनत के बाद शाम में एक कप चाय और एक रस मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं.
1: वाह, कितनी सिंपल आपकी ख्वाहिश है. चाय और रस, बस, दैट्स इट.
2: बिल्कुल.
1: ये तो आपने बड़ी बेहतरीन बात बताई है. अच्छा, मुझे ये बताइए कि इससे कोई मेमोरी एसोसिएटेड है आपकी, या आपको रस खाने, चाय और रस से क्या फील, मतलब व्हाई इज इट योर कम्फर्ट फूड?
2: सो द रीजन बीइंग, आई मीन, In today's busy life, right, it's very difficult to find some free time with your loved ones.
1: Uh-huh.
2: So this is the best part of my day when I'm coming back from work and sit with my wife, have a cup of tea and a rusk. That concludes my day in a very nice and fulfilling way.
1: ये आपने अब मुकम्मल बात की है कि केक रस्क हो, चाय हो और साथी हो जो आपको दे रहा हो खुशी, ये बन जाता है आपका फुलफिलिंग डे. थैंक यू सो मच विजेंद्र फॉर योर कॉल. सुनते रहिए, मैं अभी अनाउंस करती हूँ. और जी, ये कितनी मजे की बातें. और आप ये देखिए कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है टू हैव दैट वन पर्सन जिसके साथ आप बैठ के वो एक कप चाय एंजॉय कर सकें. दैट इज द, वो कहते हैं ना, जिंदगी का हासिल. फनी शेयर रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. अपना नाम बताइए. रेडियो की आवाज, रेडियो की आवाज थोड़ी कम कर लें ताकि मैं आपको सुन सकूं.
3: हाँ, हाय पल्लवी.
1: जी पल्लवी, बताइए क्या है आपका कम्फर्ट फूड?
3: बीइंग बिहारी, मुझे जब मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ, जब मुझे लिट्टी चोखा पसंद है.
1: लिट्टी, ठीक है जी, ठीक है. तो आप खुद बनाती हैं कि कहीं बाजार से ले आती हैं?
3: नहीं, मुझे आता है, मैं बनाती हूँ.
1: जबरदस्त. तो उससे आपको, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि इज इट अ फ्लेवर दैट यू लाइक, इज इट अ मेमोरी दैट इज एसोसिएटेड विद इट, व्हाट इज इट?
3: Both of them, like flavor भी इतना अलग होता है और memory भी, हमारे childhood memory हमारे मम्मी पापा के साथ जुड़ी हुई है. हमारे घर guest आते थे तो ये बनता था.
1: जी, चलिए.
3: तो पूरी family मिलके बनाती थी, ये सबको engage रहते थे उसमें.
1: Okay, family time आपका एक होता था ये लिट्टी चोखा बनाना. That is wonderful. Thank you so much, Pallavi, आपकी call का. सुनते रहिए, मैं अभी winner announce करती हूँ. Funny Chair Radio, you are live on air. अपना नाम बताइए.
4: Hello. My name is Riza Palaru.
1: Is it Rida? Riba? Can you spell?
4: Riza.
1: Ji Riza, bataiye. What is your comfort food?
4: Mera comfort food kya hai ki hum Nepal se hai na, isliye gundruk and rice.
1: Acha, ye
4: hamare liye acha lagta hai. After hum log acche lagte
1: my Hindi is not good. No problem. I can totally understand that. What is this that you said before rice? What was the word?
4: That is gundruk. You know, this is actually the the green leaves ka dry food.
1: Okay.
4: This is a dry. Yeah, the green leaves hota hai na hamare.
1: Ji.
4: Saag hota hai na. Saag ko dry karke hum gundruk banate.
1: There you go.
4: This one is in the past days, it was a cheap food, very available in our country. But here, it is very rare. That's why we feel like job like raining otai. Everyone is gathering. Some friends are coming, and we were oh, gundruk banana hai, acha. And then that will make everyone memorable.
1: Absolutely. It is a novelty, and it brings so many memories back, childhood memories back to you.
4: Yeah, lovely.
1: Riza, sunte rahiye, please. I will announce the winner in a bit. Thank you so much for your call. Fani Ji Radio, you are live on air. What is your name?
5: Hello.
1: Hi, what is your name?
5: Tabassum.
1: Ji Tabassum, bataiye, what is your that comfort or go-to food?
5: Yeah, evening mein jab koi khana bana ke deta hai to ghee rice,
6: लौकी का दालचा और मसालेदार क्या कहते हैं वो मशरूम.
1: मसालेदार मशरूम, वाह क्या बात है.
6: yes.
1: तो ये जी तो ये तीनों चीजें मतलब साथ खाई जाती हैं, अलग अलग खाते हैं, किस तरह खाते हैं?
6: दाल चावल दाल वो दालचे के साथ तो घी राइस के साथ तो खाई जाती है. जैसे आप कोई मीट का वो होता है तो ये मीट नहीं है, ये इसके इसके बजाय ये मशरूम मसालेदार.
1: बिल्कुल सही जी, एब्सोल्युटली आई लव मशरूम्स और मसालेदार तो बड़े ही स्पेशल होंगे. तो Thank you, Tabassum. Aapki call ka. Sunte rahiye. I will announce the winner in a bit. All right, Ji, this is Conversation Corner with Sunehri Kiran, brought to you by Fun Pizza Kitchen. $10 ka gift card. Jeetne ka mauka hai. Do, teen calls abhi aur le sakti hoon main. Right here. Funnyja Radio, apna naam bataiye.
7: This is Conversation Corner with Sunehri Kiran.
1: Agar aap radio ki awaaz kam karenge, to main sun sakti. All right. Funnyja Radio. Dekhiyo, please radio ki awaaz kam rakha karein, taaki main aapko sun sakun. Because bahut sare callers lined up hote hain. Funnyja Radio, aap on air hain. Apna naam bataiye.
8: हेलो जी, सभा बात कर रही हूँ.
1: जी सभा, बताइए आपका कौन सा है गो टू फूड?
8: मेरा नॉर्मली मीठा और कंफर्ट फूड में चाय, लेकिन चाय वो ब्लैक टी.
1: अच्छा, ब्लैक टी.
8: नो शुगर नो मिल्क.
1: और किस तरह आप चाय पीना पसंद करती हैं? मतलब बस ब्लैक टी पीती हैं, दैट्स इट?
8: हाँ, हम लोग का रूटीन मतलब ये ब्लैक टी, मतलब नो शुगर नो मिल्क. दूध अच्छा ही नहीं लगता उसमें.
1: ठीक है. अच्छा, मीठे में क्या पसंद करती हैं?
8: मीठे में सब कुछ, जो भी अच्छा बनाओ, मतलब अगर खाना ना भी तो मीठा दे दो तो आई थिंक इट्स इनफ. मेरे लिए ना फिर वो अगर कुछ और रात को समझ में नहीं आता तो मैकडोनल्ड करीब है तो मैं रात को जाके कुकीज ले आती हूँ.
1: कुकीज ले आती हैं, वेरी नाइस, जबरदस्त. तो आपका मूड अच्छा हो जाता है. ठीक.
8: मीठा कुछ होना चाहिए, मतलब मीठा हो तो खाने की भी जरूरत है.
1: एब्सोल्युटली. मुझे याद है कि हमारे घरों में पुराने में जब हम छोटे होते थे तो घर में मिठाई का एक डब्बा जरूर मौजूद होता था, क्योंकि खाने के बाद थोड़ा सा मीठा जैसे पेरेंट्स खाते हैं तो एक मिठाई हल्की होती थी ताकि मीठे की क्रेविंग खत्म हो जाए. इज दैट राइट?
8: यस, वो पता नहीं कुछ उस पे कुछ होता है.
1: जी बिल्कुल सही है जी. थैंक यू. जी थैंक यू सभा, आपकी कॉल का. सुनते रहिए, आई विल अनाउंस द विनर इन अ बिट. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम? फाइनेंशियल रेडियो. All right, जी, last caller of the day. आप लाइव हैं, अपना नाम बताइए.
9: Hey, hi, my name is Shweta.
1: Hi, Shweta, बताइए, what is your comfort food?
9: Idli vada sambar with filter coffee.
1: Oh wow, idli vada sambar. तो किस तरह आप ये तीनों चीजें साथ लेना पसंद करती हैं कि पहले इडली वड़ा सांबर खा लेती हैं फिर कॉफी पीती हैं?
9: First is the vada sambar and then the idli and then last is the coffee.
1: Lovely.
9: It should be filter coffee all the time.
1: Lovely. And that just makes you happy? It improves your mood?
9: Oh, yeah. It's mouth-watering even now. Anytime.
1: All right. Lovely. Thank you so much, Shweta. Sunte rahiye. Main abhi will announce karti hoon right after this. Acha ji, ye hua hamara conversation corner khatam. Calls to aayi rahi hain, lekin mazrat ke saath ab mazid calls nahi le sakti. To main aapko ek minute mein winner announce kar rahi hoon. Aap mere saath bane rahiye, kahin mat jaiye. Let me do the math formula. Put your numbers in it and get the winner.

0: All right, Riza, if you are listening, our Nepali contestant, agar aap sun rahi hain, toh please mujhe call kijiye, give me a call. You are the lucky winner of today's contest. This was from Fun Pizza Kitchen. Riza, if you are listening, please give me a call, 972-235-5555. I'll see you guys after the break.
1: You turned down that job to become a diving instructor?
2: Yeah, I thought Ma would say no.
1: And?
2: She said, build your life the way you dream it.
3: For every mother who chooses belief over fear and raises you to become your best self. From Tanishq, this Mother's Day, enjoy up to 20% off on diamond value and on gold jewelry making charges. Also, 0% deduction on exchange of old gold above 18 carat. Celebrate her at Tanishq, 2809 Preston Road, suite number 1200 Frisco. Tanishq, a Tata product, raised you to become. Conditions apply.
4: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
5: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
6: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR. द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनकी जिम्मेदारी.
7: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस.
8: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
0: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
8: कैसे?
0: पेज 3 ईटरी?
8: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
0: ड्यूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
8: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
9: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
10: इमिग्रेशन पेपर वर्क से परेशान? अब टेंशन छोड़िए. easypetition.com के साथ USCIS पेटिशन फाइल करना हुआ इजी. आप खुद इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर और फाइल कर सकते हैं पेटिशंस लाइक F1 या B1 चेंज ऑफ स्टेटस, F1 OPT, H4 विद EAD, I-485 और I-485J, N-400 नेचुरलाइजेशन और 200 से भी ज्यादा पेटिशन टाइप्स और प्राइसिंग सिर्फ $30. तो आज ही जाइए easypetition.com पर. easypetition.com.
11: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
12: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
11: K2 ड्राइव मतलब?
12: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस, सब K2 ड्राइव हैंडल करता है.
11: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
12: 100%
13: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0400. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
14: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
15: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
16: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, find them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
15: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
17: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?
18: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं.
19: डालस की धड़कन 104.9 FM, फन एशिया रेडियो.

And with that, it is time now to give you the currency update. US dollar kahan stand kar raha hai with respect to other currencies in the world. So, Thursday, May the 7th, right now, 4:47 p.m. in the studio. And according to xrates.com, euro aaj 0.85 pe trade kar raha hai, jabki British pound is trading at 0.73. Indian rupee 94.40 pe stand kar raha hai, jabki Pakistani rupee 278.97 pe trade kar raha hai. Nepali's rupee 151.11, jabke Bangladeshi taka 122.74 Bangladeshi takas are trading for one US dollar. और इसी के साथ गोल्ड प्राइस अपडेट देते हुए गाने की तरफ जाएंगे जी. इस वक्त अकॉर्डिंग टू goldprice.org, गोल्ड प्राइस पर आउंस है $4,685.51. जबकि 1 ग्राम सोने की कीमत राइट नाउ इज $150.64. कल की निस्बत 1 ग्राम सोने की कीमत में 6 सेंट्स का इजाफा हुआ, जबकि 1 आउंस सोने की कीमत में $1.94 का इजाफा देखने को मिला. But that's pretty much all that I have for you, where your finance matters, right here on Sunehri Kiran.

आपका क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन रोड्स पे क्या सिचुएशन है ये आपको जरूर बता सकती हूँ. इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द ट्रैफिक अपडेट. और दो इंसिडेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं. सबसे पहले देयर इज एन इंसिडेंट एट US 80 टुवर्ड्स गैलोवे एवेन्यू वेस्ट बाउंड, जिसकी वजह से टू लेन्स आर ब्लॉक्ड इंक्लूडिंग एन एग्जिट लेन. लेकिन चूंकि ये एक्सीडेंट जो है जी अबाउट घंटे पहले रिपोर्ट किया गया था, तो वी आर होपिंग कि बस अब क्लियरिंग अप ऑलमोस्ट हो चुकी होगी, बट स्टिल द सेवेरिटी ऑफ द इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड क्वाइट हाई. देर इज अनदर कोलिजन दैट हैज बिन रिपोर्टेड अबाउट 20 मिनट्स अगो एट 35 ईस्ट टुवर्ड्स सैंडी लेक रोड एंड विटलॉक लेन. दिस इज साउथ बाउंड, जिसकी वजह से टू लेन्स आर ब्लॉक्ड इंक्लूडिंग एन एग्जिट लेन एंड द सेवेरिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इज रिपोर्टेड हाई. बहुत सारा बैकअप यहाँ पे इस वक्त पाइल अप होना शुरू हो गया है, एंड प्रॉबेबली सिंस बिकॉज इट इज रिपोर्टेड एट अबाउट 20 मिनट्स अगो, सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ डिलेज एंड बैकअप एट दिस स्पॉट इज वेल. सो दिस इज वेयर यू हैव टू बी केयरफुल. दिस इज 35 ईस्ट टुवर्ड्स सैंडी लेक रोड एंड विटलॉक लेन साउथ बाउंड. विद दैट इज ऑल ऑफ द ट्रैफिक दैट आई हैव फॉर यू राइट नाउ. मैं आपसे लेने लगी हूँ विद आई टाइम नाउ टू से माई बायस टू यू, बट विद दिस प्रॉमिस, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे के साथ, यानी कि थैंक यू फॉर लॉर्ड फॉर फ्राइडे टुमारो. फ्राइडे इज माई फेवरेट डे, नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई लुक फॉरवर्ड टू सैटरडे एंड संडे एंड फ्राइडे मेक्स मी हैप्पी, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम आते हैं किड्स जंक्शन के साथ 3 PM टू 4:30 PM बच्चा पार्टी. आई एम हेयर फॉर योर रिक्वेस्ट. यू कैन गिव मी कॉल एट 972-235-5555 एंड रिक्वेस्ट योर फेवरेट सॉन्ग. आपसे बातें होती हैं और आप सबके पसंद के गाने प्ले किए जाते हैं, और उसी के साथ लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ. तो बने रहिए मेरे साथ, मिलूंगी आपसे कल एक बार फिर 2:30 PM से लेके 5 PM तक ऑन योर फ्राइडे दैट इज विद योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली रेस्ट ऑफ योर इवनिंग.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Aaja meri gaadi mein baith ja.
8: Baith jaun? Pakka? Kal hi to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
9: Wo thoda overheating tha.
8: थोड़ा तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
11: इन प्लेनो.
10: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
8: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
10: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
8: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
10: वेट, व्हाट?
12: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
13: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
12: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
14: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
15: Excuse me. It's called being loyal.
14: It's called being predictable.
15: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
14: And what's so special at Neon Cactus?
15: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
14: Not bad.
15: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
14: Okay, this I didn't expect from you.
15: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
8: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
10: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
8: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया. कैसे मैनेज होगा सब?
10: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
12: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
16: Chicken banana.
17: Chicken banana?
18: Bro, banana nahin. Ba-na-na. Matlab, make the chicken right.
19: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
20: Computer ji ka sawal ye hai, business owners ko loan lena mushkil kyun lagta hai? Option A, slow process. Option B, ज्यादा पेपर वर्क. ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न. या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर.
21: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा.
20: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए.
19: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
1: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338, The SBA Loan Experts, फैसला क्लैरिटी के साथ।
11: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and 4th from 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. They are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts throughout the day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. In Ravi's, just bigger, older and be more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
22: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.

0: अटक लौंडो के दिल पटक पटक ससे जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमोन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट
1: बड़ो लोग

0: वाला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

हेलो एंड वेलकम दोस्तों यारो, मैं हूँ पारो। आज रहूंगी आप लोगों के साथ 5 से 7 और 7 से 9, यानी कि लंबा टाइम आप लोगों के साथ रहूंगी। वैसे तो मैंने कहा था कल कि मैं आप लोगों से मिलूंगी 7 बजे, लेकिन मार्विन जी नहीं आ पाएंगे आज, तो मार्विन जी की जगह पर रहेगी पारो लंबे वक्त तक आप लोगों के साथ। इसका मतलब बहुत सारी रिक्वेस्ट ले सकती हूँ क्योंकि बहुत वक्त है हमारे पास। देखिए, जिंदगी में ऐसा बहुत कम होता है, हम बोलते हैं बहुत वक्त है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैं ये किसी से बात कर रही थी कि साल में मेरे कुछ प्लान्स हैं, फिर मुझे याद आया कि ये साल तो क्वार्टर से ज्यादा हो चुका है, क्वार्टर से ज्यादा हो चुका है, आधा होना हो जाएगा, ये कह सकते हैं अगले अगले महीने के अगला महीना शुरू होगा, तो ये समझ लीजिए साल आधा खत्म। तो अब वक्त ऐसे लगता है कि उड़ रहा है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ये कहती हूँ रेडियो पर कि वक्त बहुत है हमारे पास, बहुत वक्त है। घड़ी में हुए हैं 5:15, यानी कि 9 बजे तक हमारे पास 4 घंटे से थोड़ा सा कम वक्त है, लेकिन दैट इज अ लॉट ऑफ टाइम टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। आज बहुत इंटरेस्टिंग कुछ बातें करना चाहती हूँ मैं, आज के दिन से रिलेटेड है ये बातें, एंड वी विल टॉक अबाउट दैट इन अ लिटिल बिट। क्योंकि लंबा टाइम है इसलिए हम 7:30 नहीं, 7:30 बजे यूजुअली हम अपना एक सेगमेंट शुरू करते हैं, हम पहले भी कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स। एंड इफ यू हैव समथिंग इन माइंड, यू हैव समथिंग दैट यू वांट टू शेयर, और कोई गाना करना चाहते हैं रिक्वेस्ट, अगर समझ नहीं आ रहा किसको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप योर्स ट्रूली यानी कि

माइंड, यू हैव समथिंग दैट यू वांट टू शेयर, और कोई गाना करना चाहते हैं रिक्वेस्ट, अगर समझ नहीं आ रहा किसको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप योर्स ट्रूली यानी कि पारो को कर सकते हैं रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट एंड डेडिकेट, अगर ये नहीं समझ आ रहा किसे डेडिकेट करें या फिर खुद को कर सकते हैं डेडिकेट। 9723555555 स्टूडियो का नंबर।

0: थोड़ा सा ही वक्त बचा है, बड़ी प्यारी रिक्वेस्ट आई है मरियम जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और सर आपका नाम मैं नहीं जान पाई, वक्त निकल गया, लेकिन आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा है, एंड आई थिंक आप लोग शायद ड्राइव कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, एक मिनट बचा है, हम छोटे से ब्रेक में जाने वाले हैं, क्योंकि ब्रेक थोड़े जल्दी आते हैं इस टाइम पे एट द स्पीक आवर, सो ब्रेक के बाद जैसे ही हम लौटेंगे मैं आप ही की राइट अवे आप लोगों के ही गाने से शुरू करूंगी ब्रेक के बाद, जो आपने करा है रिक्वेस्ट और मरियम ने कहा उन्हें डेडिकेट कर दीजिए, और जो उनके साथ हैं उनको भी डेडिकेट करते हैं हम, एंड बताना चाहती हूँ दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय ड्रीम होम मॉर्गेज। ड्रीम होम मॉर्गेज हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज अचीव होम ओनरशिप सिंस 1998। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कितने साल हो गए, शायद 27 साल हो गए, 28 ईयर्स में भी लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स, देयर एक्सपर्ट टीम डिलीवर्स स्ट्रेस फ्री टेलर्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस, मेक योर ड्रीम होम अ रियलिटी विद ड्रीम होम मॉर्गेज। डिटेल्स के लिए आप कॉल कर सकते हैं 972-245-5626 और विजिट dreamhomemortgage.com। वैसे तो देखिए मदर्स डे दो दिन में है, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ टू ऑल द वुमेन आउट देयर हु आर मदर्स और हु आर गोइंग टू बी मदर्स, आई वांट टू विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। करेंगे और बात मदर्स डे की, करते रहेंगे बिल्कुल, बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशल डे, लेकिन थोड़ी सी ब्रेक के बाद।
1: You turned down that job to become a diving instructor?
2: Yeah, I thought Ma would say no.
1: And?
2: She said, build your life the way you dream it.
3: For every mother who chooses belief over fear and raises you to become your best self. From Tanishq, this Mother's Day, enjoy up to 20% off on diamond value and on gold jewelry making charges. Also, 0% deduction on exchange of old gold above 18 carat. Celebrate her at Tanishq, 2809 Preston Road, suite number 1200 Frisco. Tanishq, a Tata product. Raised you to become. Conditions apply.
4: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPS Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
5: Information shared here is for informational purposes only

0: and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth at mytimeequity.com for professional advice.
1: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
2: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
1: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
3: Kabhi aisa lagta hai ki decisions aap le rahe ho par results control mein nahin, career ruk sa gaya hai. Rishton mein clarity nahin aur future bas ek sawal ban kar reh gaya hai. हर जगह आंसर्स ढूंढने से बेहतर है सही जगह समझना. कनेक्ट विद अनीता चुंद्रू एट द कॉलोनी टेक्सस. चार्ट रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हवन सर्विसेज से मिले सही गाइडेंस. कॉन्टैक्ट 9453387670. ईमेल astro111city@gmail.com. अनीता चुंद्रू, योर लाइफ विद राइट डायरेक्शन.
4: Contact 9453387670. Email astro111city@gmail.com or visit taxi at 5200 Memorial Drive, Colony, Texas.
5: Inefficient man.
6: Very complex.
5: Bit clumsy hai.
6: Are confusion hi confusion hai. Abhe!
7: Disjointed software ko use karna itna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing se lekar customer support, accounting, operations ya HR. Kaam ek, software ek. Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
8: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है, पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर. एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर.
9: द फ्लेवर लाउंज वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस.
8: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज, अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर.
9: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल.
10: बेटा इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
11: मम्मा कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है.
10: रोज का सेम प्रॉब्लम.
12: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे. लुमडी लर्निंग सेंटर, जहाँ बच्चे रटते नहीं समझते हैं. लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मैकिनी ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है.
13: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 to 13. कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग.
12: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को.
9: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फनेशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ. लुमडी लर्निंग सेंटर, बिल्ड मास्टरी, अनलॉक पोटेंशियल.
14: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है.
15: प्लान या होप?
14: मतलब है
15: प्लान मतलब स्ट्रेटजी, होप मतलब देखते हैं क्या होता है.
14: ओके, तो मेरा वाला होप है.
15: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं.
14: क्यों?
15: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है.
8: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी. फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-693-2077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com.
16: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit SIUTNA.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.

0: वेलकम बैक वेलकम बैक. दिस वॉज अ सॉन्ग रिक्वेस्टेड बाय मिरियम और उन्हीं को डेडिकेट किया है मैंने एंड क्योंकि उन्होंने कहा. एंड विद दैट आई वॉन्ट टू से समथिंग. आई नो दैट काफ़ी लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल होता है कि फंडिंग क्या है और फंडिंग कैसे करी जाए. आज हमारे साथ फोन लाइन पर ऑन एयर है एक SBA लोन एक्सपर्ट जो लोगों को बिजनेस परचेज, फ्रेंचाइजी सेटअप्स या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए लोन ऑप्शंस के बारे में बताते हैं. वेलकम ऑन फन एशिया 104.9 FM मिस्टर शाहिद पंजवानी.
1: थैंक्स फॉर हैविंग मी. गुड इवनिंग टू यू एंड ऑल लिसनर्स.
0: Yes, thank you so much. Good evening to you as well. So, Mr. Panjwani, I have heard that SBA is starting two new loan programs to help business owners. Can you please tell our listeners what these new programs are and how they can help business owners seeking capital?
1: Yes, so SBA ne do naye loan programs shuru kiye May 1st pe. First one is Made in America loan program and second one is called SBA Grocery Guarantee Program. So, I'll quickly give information on both and who can be eligible for this. And these are brand new programs. These are existing, बहुत सारे SBA के programs चल रहे हैं, ये अच्छा से नहीं है. तो जो Made in America loan program है, वो है manufacturers के लिए. If anyone is in a manufacturing business, they can qualify for up to $1 million term loan. This is to help them expand. As we all know, the current administration is trying to help manufacturers to manufacturing America में वापस आ जाए जो बाहर गई है. So to help them, they have started this. सेकेंड लोन प्रोग्राम जो मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी में तो बहुत सारे मुझे वो है SBA ग्रोसरी गारंटी लोन प्रोग्राम. ये है फूड रिलेटेड बिजनेस के लिए जो फूड के होलसेलर्स है या फूड के रिटेलर्स है, ग्रोसरी रिटेलर्स है या जो फार्मर्स है या फिशिंग से या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या मीट शॉप से रिलेटेड है या लॉजिस्टिक्स है जहाँ वो फूड सप्लाई चेन से रिलेटेड है, ये सारे बिजनेसेस क्वालिफाई हो सकते अप टू $1 million लोन फॉर बिग एक्सपेंशन ऑफ देयर बिजनेस एंड टू हेल्प देम ग्रो देयर बिजनेस एंड ऑल्सो टू ब्रिंग द कॉस्ट डाउन. सो एनीवन इन दिस टू फील्ड इधर मैन्युफैक्चरिंग और इधर फूड रिलेटेड बिजनेस कैन फॉल अस एंड वी कैन हेल्प यू अप्लाई फॉर दीज लोन. रिमेंबर बहुत सारे लोन SBA के तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं, वर्किंग कैपिटल लोन, बिजनेस एक्विजिशन लोन, लाइन ऑफ क्रेडिट, बट ये दो नए प्रोग्राम है जिनमें क्रेडिट की थ्रेशोल्ड थोड़ी लीनियंट कर दिए. इसमें इतनी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं, इसके क्वालिफिकेशन बहुत इजी हो गए ताकि ये दो इंडस्ट्रीज को थोड़ा बूस्ट मिल सके.
0: That is excellent information. तो हमारे जो भी listeners manufacturing या food related business है, you need to contact Mr. Panjwani. Mr. Panjwani, can you also share your contact details जो आपसे बात करना चाहते हैं?
1: 817-786-3338. They can call or text me out.
0: Thank you so much. Is there anything else that you want to share with us?
1: These are two new programs, SBA Grocery Guarantee and Made in America Loan Program. Having said that, anyone looking for any kind of commercial funding, whether if you are buying a business, या आपका existing business है और उसको grow करने के लिए पैसा चाहिए, या refinance करना है, आपके interest rate बहुत high है, या rental property, anything commercial related, we can help and they can reach me on the same number.
0: Thank you so much, Mr. Panjwani. And I'm sure this is a lot of very helpful information for our listeners. So, and thank you again for being on air.
1: Thanks for having me.
0: Sure. दोस्तों मैं पारू हूं और जिन लोगों ने अभी सुनना शुरू किया है वो सोच रहे होंगे मैं इस वक्त कैसे हूं आप लोगों के साथ. मारविन जी का टाइम है. जी हां बिल्कुल, मारविन जी का ही टाइम है, लेकिन आज मारविन जी नहीं है स्टूडियो में और दैट इज व्हाई आई एम कवरिंग फॉर हिम. सो इफ यू हैव अ सॉन्ग इन माइंड दैट फिट्स दिस थर्सडे इवनिंग वी आर इंचिंग क्लोजर टू द वीकेंड. दिस वीकेंड मैं बहुत खुश हूं. यस, मदर्स डे, इट्स अ वेरी स्पेशल डे एंड वेरी फॉर्चुनेट मेरी मम्मी मेरे साथ रहती हैं. कुछ हमारे लिसनर्स भी जानते हैं, वो मुझे कॉल करते हैं बिकॉज used to be an RJ and वो भी शो करती थी एक्चुअली. तो कुछ हमारे लिसनर्स अभी भी कॉल करके कहते हैं आपकी मम्मी कैसी हैं. सो यस, वी विल बी सेलिब्रेटिंग मदर्स डे, बट आई ऑल्सो दिस वीकेंड आई रियली वॉन्ट टू रिलैक्स. मुझे लगता है कि मैं बहुत भागे जा रही हूँ एंड देर आर सम थिंग्स दैट आई रियली नीड टू काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट एंड आई एम क्यूरियस टू सी वॉट यू ऑल आर प्लानिंग दिस वीकेंड. आप ऐसा क्या प्लान कर रहे हैं? कुछ मेजर इवेंट है या आप भी मेरी तरह मतलब बस सोने और मस्ती मारने का प्लान है आपका घर में? एंड वॉट इज इट दैट planning this weekend? I would love to know that. And if you have a song in mind, you know the number to call 972-355-5555.

0: गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
2: 3 minutes, that's how long it takes to sign up with Bezit. They challenge your property tax appraisal, build the case, go to the hearing. You just wait for the result. 89% of customers get a reduction. Average savings over $1,100. Call in and Denton County. May 15th is your last day this year. Bezit.co.
7: घर की याद नहीं आई तुझे जैसी?
8: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
9: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
8: सच में? बिल्कुल घर जैसा।
9: Try the variety of veg and non-veg specialty kulchas with gravy, butter chicken and many more. Located in Irving, there is Punjabi ghar ka khana on every plate. Chandigarh wale, taste that feels like home.
10: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
11: Desi cravings simple nahi hoti, unke levels hote hain. Level 1, mixed veg pakora, light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
2: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: Ab to karna hi padega, madam.
14: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
2: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
15: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
16: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಡ್ಯಾಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಇಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಕ 9th May ಅಂಡ್ 10th May. ಸ್ಥಳ ಹಯಾತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ, ಫ್ರಿಸ್ಕೋ, ಡ್ಯಾಲಸ್. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಾತ್ರಿ 8 ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
17: कहाँ से आते हैं?
18: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

वेलकम बैक, वेलकम बैक. मैं रहूंगी आप लोगों के साथ. जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उन्हें बता दें, पारो रहेगी आप लोगों के साथ रात के 9 बजे तक. 7 से 9 रहती हूँ आज. थोड़ा सा एक्सटेंडेड टाइम, यानी कि थोड़ा पहले शुरू हो गई है हमारी ये गाड़ी, हमारी ये जर्नी. एंड वी हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स टू टॉक एंड कुछ इंटरव्यूज और कुछ और इस टाइम पे इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं शेयर करने की, स्पेशली फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इनटू बिजनेसेस. और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनकी ज़रूरत होती है, तो ये सब रिसोर्सेज भी फनिश आपके लिए लाता है. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एंटरटेनमेंट, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट एजुकेशन, नॉलेज और भी बहुत सारे रिसोर्सेज. आई नो अ लॉट ऑफ अर लिसनर्स समटाइम्स बिकम अर क्लाइंट्स और यूजर सर्विसेज, और जो भी हम चीज़ें हमारे क्लाइंट्स के में हम बताते हैं उनकी चीज, उनकी जो सर्विसेज हैं उनसे हेल्प होती है और यू गिव फीडबैक. सो दिस इज रियली वन स्टॉप शॉप. बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और हमें बहुत खुशी मिलती है. और इसके साथ खुशी मिलती है हमें आपकी खुशी में शरीक होने में, यानी कि इफ देर इज समथिंग दैट यू आर सेलिब्रेटिंग, बर्थडे, एनिवर्सरी, एनीथिंग, प्लीज शेयर विद मी ताकि मैं भी आपको विश कर सकूं और मेरे साथ साथ पूरा डैलस आपको विश कर सके. दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई वेरी मच इंजॉय. अभी मैं काम करने जा रही हूं जो मैं थोड़ी टेंशन में हूं, क्योंकि आई ग्रू अप इन दिल्ली. सम ऑफ माई फैमिली मेंबर्स, आई एम नॉट अ नेटिव तेलुगु पर्सन फॉर श्योर, लेकिन सम ऑफ माई फैमिली मेंबर्स आर फ्रॉम आंध्रा और मैं आंध्रा बहुत जाती हूं, तो मुझे थोड़ा थोड़ा तेलुगु समझ में आती है, लेकिन सिर्फ समझ में आती है. मैं बोल नहीं सकती हूं बिकॉज आई डिडंट ऑब्वियसली ग्रू अप विद तेलुगु. सो आई डू वांट टू ट्राई समथिंग. सो हमारे जो बहुत सारे लिसनर्स हैं जो तेलुगु बोलते हैं, अगर वो ये सुनते हैं एंड इफ दे सी if they see that कुछ तो गड़बड़ है इसमें जो पारो कह रही है, कुछ मे बी उतना नहीं फिट हुआ, नो प्रॉब्लम. यू कैन कॉल मी 972-235-5555, क्योंकि आई वुड लव टू लर्न बेटर तेलुगु. लेकिन यहां पर मैं कुछ तेलुगु में बोलने की कोशिश करती हूँ, देन आई विल ट्रांसलेट इन इंग्लिश फॉर माई नॉन तेलुगु लिसनर्स एज वेल. रेडियो संगम को ओका संवत्सरम वार्षिकोत्सव శుభాకాంక్షలు వారికి అపరమైన విజయం లభించాలని కోరుకుంటున్నాను. So this is one year anniversary of Radio Surbhi, and Radio Surbhi is so very loved at Fanesia. So I do want to mention that we are wishing Radio Sangam. I am, yes, Radio Sangam, actually. Yes, Radio Sangam ki ek saal ki anniversary hai, and I am wishing Radio Sangam a very, very happy anniversary.

0: फिर से बोलना चाहती हूँ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू रेडियो संगम। देखिए, मैं तेलुगु में बोलने की कोशिश कर रही थी और बड़ा मुझे मजा भी आया, मुश्किल हुई और मैं थोड़ा सा आई थिंक कॉन्सेंट्रेशन मेरा हिल गया। सो आई डू वांट टू से दिस फॉर ऑल अवर लिसनर्स, दोज हु स्पीक तेलुगु एंड दोज हु डोंट, दैट यू नो इट्स अ वेरी स्पेशल टाइम फॉर अस बिकॉज आर रेडियो संगम इज सच अ पॉपुलर रेडियो स्टेशन, तेलुगु रेडियो स्टेशन, एंड वेरी वेरी पॉपुलर, द मोस्ट पॉपुलर रेडियो स्टेशन इन डैलस एंड मस्ट आई से इन the US. This is the time that I want to welcome you all to the URA Debt Relief segment. Today, we have the pleasure of having URA Debt Relief Organization representative, Mr. Aman. He's going to tell us about URA Debt Relief program. Hi, Mr. Aman. Happy evening. Thanks for joining us on 104.9 FM Fanisha Radio. How are you doing today?
1: Fanisha sunne wale sabhi listeners ko URA aur Aman ki taraf se namaskar. Good evening. इतने अच्छे प्रोग्राम के बीच में थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट हो जाए तो नथिंग लाइक दैट। और वैसे भी ये हफ्ते का सातवां दिन है और कब ये पिछला महीना खत्म हुआ और नया महीना शुरू हुआ और आज सात दिन गुजर भी गए, लेकिन इन सात दिनों से लेकर अगले 15 तारीख तक एक खास चीज जो आपके साथ घटना घटेगी वो ये कि आपके लेटर बॉक्स में लव लेटर्स आएंगे क्रेडिट कार्ड वालों के कि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट ड्यू है, भर दीजिए नहीं तो क्रेडिट खराब कर देंगे, और आप बिना उस लेटर को पढ़े हुए सीधा लेटर जो है पेमेंट स्केड्यूल कर देंगे। लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा कि आप कितना इंटरेस्ट भर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो 28, 30 या फिर 47% तक कुछ क्रेडिट कार्ड का आप इंटरेस्ट भरते हैं। अब अगर आप 100 रुपया भी किसी मिनिमम पेमेंट पर देते हैं तो $47 तो इंटरेस्ट में कट जाता है, तो फिर प्रिंसिपल अगले महीने फिर उतना ही 47% ब्याज के साथ आपके सामने आ खड़ा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड सच में उतर जाए, क्योंकि मिनिमम पेमेंट से क्रेडिट कार्ड उतरता नहीं, ना आपका क्रेडिट कार्ड उतरता है ना आपका स्कोर इंप्रूव होता है, क्योंकि आपका डेट टू इनकम रेशियो नहीं खत्म होता, तो डेट टू इनकम रेशियो इंप्रूव नहीं होता तो स्कोर कैसे बढ़ेगा। तो अगर आप भी परेशान हैं कि क्रेडिट कार्ड है उतरने का नाम नहीं ले रहे, तो सिंपल उसका सोल्यूशन है सेटलमेंट। आपकी नेगोशिएशन करके आधे से ज्यादा कर्जा माफ करवा सकते हैं। कार्ड का आधा कर्जा अगर माफ हो जाए तो आधे की इंटरेस्ट फ्री पेमेंट बनाई जा सकती है। सिंपली आप हमें कॉल कर सकते हैं। ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड बल्कि आपके पर्सनल लोन्स अगर हैं, या फिर आपकी गाड़ी जो रीपोजेस हो गई है यानी कि बैंक उठाकर ले गया बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट, या फिर गाड़ी टोटल हो गई किसी कारणवश, शुक्र है आप ठीक ठाक हैं, लेकिन अगर गाड़ी टोटल हो गई है, इंश्योरेंस नहीं थी आपके पास या इंश्योरेंस ने पूरा क्लेम नहीं दिया, तो उस लोन को भी आप नेगोशिएट करके आधा माफ करवा सकते हैं। सिंपल नोट कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर और डायरेक्ट मेरा नंबर। टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 1-888-888-9914, या फिर आप अपने दोस्त अमन यानी मुझसे बात कर सकते हैं। कॉल कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए 9167763555, एरिया कोड 7763555, और हमारी वेबसाइट है www.ura.org। लेकिन अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, लिख नहीं पाए हैं नंबर, तो इजी ट्रिक ये है कि फनेशिया रेडियो कॉल कीजिए, एक अच्छे सी गाने की फरमाइश और अपने दोस्त अमन का नंबर ले लीजिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड का कर्जा मिनिमम पेमेंट से नहीं उतरेगा, आपको कॉल करना होगा URA को।
0: थैंक यू सो मच मिस्टर अमन, और बिल्कुल आपने सही कहा, यू कैन कॉल अस एनी टाइम एंड मैं आई बी हैप्पी टू शेयर आपके दोस्त अमन साहब का नंबर आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच अमन जी फॉर बीइंग विद अस, बाय। एंड हियर वी आर, छोटे से एक ब्रेक में जाने वाले हैं, बट विद दैट लिसन टू द सॉन्ग पारो इन द हाउस।

0: केयर करनी चाहिए, सबकी केयर करनी चाहिए। और इस वक्त अगर आपकी फैमिली में कोई मदर हैं, आपकी अपनी मदर हैं या वाइफ हैं जो मदर हैं, एनी बड़ी, एनी वुमेन हु इज अ मदर, इनफैक्ट एनी वुमेन आई शुड से, बिकॉज वुमेन इज इन सम इन आई बिलीव इज सिनोनिमस विद मदर, बिकॉज मदर्स डे इज कमिंग, तो केयर तो करनी चाहिए, अभी तो करिए कम से कम, क्योंकि मदर्स डे अब तो बनता है, हमेशा ही बनता है वैसे। एंड दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय मलाबार। देखिए मदर्स डे आ रहा है, मलाबार को मत भूल जाइएगा, याद रखने का टाइम है मलाबार को, इन दैट स्पेशल टाइम ऑफ मदर्स डे। शाइन ब्राइट विद डायमंड्स फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, डालस में है ये, ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को। दिस इज योर गो टू डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड रिंग्स, इयर रिंग्स, नेकलेसेस एंड मोर दैट स्पार्कल फॉर एवरी स्पेशल मोमेंट। क्लासिक सोलिटेयर से कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स, देयर डायमंड कलेक्शंस ब्लेंड्स सुपीरियर क्वालिटी विद टाइमलेस डिजाइन, परफेक्ट फॉर एंगेजमेंट्स, एनिवर्सरीज और जस्ट सेलिब्रेटिंग लव। डाउनलोड द मोबाइल ऐप नाउ फॉर मोर डिटेल्स एंड सेलिब्रेट मदर्स डे विद द मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स। पारो के साथ रहेंगे आप रात के 9 बजे तक, लौटूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
7: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
8: सब कुछ साफ रख सकते हो,
9: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
10: क्योंकि ये कौन बोला?
9: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
11: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
12: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
13: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
14: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। 0 डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
13: K2 ड्राइव मतलब?
14: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
13: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
14: 100%
12: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402। K2 Drive, Dallas's smartest fleet partner.
8: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and 4th from 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. They are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts throughout the day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. In Ravi's, just bigger, older and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
15: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
16: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।

हेलो एंड वेलकम. एक घंटा हो गया है हमारा, बाकी तीन घंटे बचे हैं. घड़ी में हुए हैं 6:05. अ वेरी हैप्पी थर्सडे इवनिंग टू ऑल द लिसनर्स ऑफ फनिशर रेडियो 104.9 FM. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग टू अस एंड कॉलिंग अस. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. अगर अभी तक कॉल नहीं करा है और कोई गाना सुनना चाहते हैं, सो यू नो व्हाट द नंबर इज. थोड़ी देर में हम हमारे सेगमेंट की भी बात करेंगे जो हर रोज हम करते हैं मंडे थ्रू थर्सडे मेरे साथ आप पारो के साथ, यानी कि एक स्पेशल सेगमेंट करते हैं. वी विल डू दैट, बट आई वांट टू बिफोर दैट आई वांट टू डू अ गिव अवे. लेकिन उसके पहले कुछ गाना सुनते हैं एंड देन आई एम गोना टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग गिव अवे फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर.

इसका लास्ट सीन इस गाने का बहुत मजेदार है। ये एक गुरुद्वारे में खड़े हुए हैं शाहरुख खान साहब और तापसी पन्नू के साथ, और एंड ही स्प्रेइंग, मत्था टेकना जिसको बोलते हैं गुरुद्वारे में, एंड ही इज डूइंग दैट। लेकिन हाथ में है उनके फूल नहीं है, उनके हाथ में है पासपोर्ट। सो यस, ही इज प्रॉब्ली प्रेइंग फॉर वीसा और समथिंग लाइक दैट। बट ये इंटरेस्टिंग सी फिल्म है। लेकिन अभी उससे भी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज की बात हम करने जा रहे हैं, दैट इज रेड हॉट चिली पेपर, एंड दिस इज अ गिव अवे। गिव अवे डिशेज क्या है वहां पर, इफ यू विन दिस, इट्स अ ड्राई चिली चिकन। मेरे पास कॉल आनी शुरू हो गई है। पहले आप सुन तो लीजिए सवाल। अगर आप किसी रिक्वेस्ट, गाने की रिक्वेस्ट के लिए करें, आप कॉल कर सकते हैं। बट लेट्स लिसन टू दिस गिव अवे, बिकॉज देन आई विल बी ओनली टेकिंग आंसर्स फॉर दिस गिव अवे एंड नॉट द रिक्वेस्ट, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स और सो। सो पीपल हु आर आंसरिंग, दे हैव एडिक्वेट टाइम, क्यों? इसलिए हम 5 मिनट के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं लेंगे। वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द गिव अवे राइट नाउ। सो यस, रेड हॉट चिली पेपर का क्या है गिव अवे? डिशेज हैं ड्राई चिली चिकन और चिली बेबी कॉर्न और डैलस बेस्ट बटर चिकन, रेड हॉट चिली पेपर का चिकन मक्खन वाला। सो दीज आर द ऑप्शंस फॉर यू। यू कैन पिक अप द गिव अवे फ्रॉम लोकेशंस इन रिचर्डसन, मैकिनी और एलन, बट यू कैन नॉट पिक अप फ्रॉम फ्रिस्को। सो अब सवाल क्या है, और इसके पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, ये गिव अवे आपने इस शो में या किसी और शो में नहीं जीता हो इन द लास्ट 1 month, बिकॉज इफ यू हैव देन यू आर डिस्क्वालिफाइड, एंड दैट्स जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीबडी गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी। एंड विद दैट क्या है मेरा सवाल, आज के दिन से रिलेटेड है, उसकी अभी तक हमने बात नहीं करी। आज का बड़ा प्यारा दिन है, विच इज May 7th। May 7th इज एक्चुअली नेशनल टूरिज्म डे, और US में मनाया जाता है ये, यानी कि दिस इज अ डे, इट एक्चुअली इट्स ऑल्सो कॉल्ड नेशनल टूरिज्म वीक। ये पूरा हफ्ता यानी कि 3rd to 9th का जो हफ्ता है इसको टूरिज्म वीक कहा जाता है, और आज का जो दिन है दैट इज टूरिज्म डे, विच हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू डेस्टिनेशंस एंड सपोर्टिंग लोकल बिजनेसेस। ये इसका पर्पस है। थोड़ी और इसकी बात थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन फिलहाल एक गिव अवे इससे रिलेटेड करते हैं। गिव अवे ये है, और सवाल ये है, आई मीन गिव अवे तो बता दिया मैंने आपको, पर सवाल यह है क्या है, सवाल यह है कि यूएस के बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, आपको मुझे टॉप मोस्ट नेशनल पार्क्स Top 10 में से, स्पेशली मैं कहूंगी Top 5 में से, और जो मोस्ट विजिटेड या मोस्ट पॉपुलर है उसमें से आपको मुझे 3 नाम बताने हैं। द पर्सन टू गिव दैट राइट आंसर, नहीं यहां पर फर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग बहुत सारे सही जवाब देंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू एक्चुअली इन दिस इज दैट आई एम गोइंग टू डू अ लकी ड्रॉ, सो ऑल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू विन दिस प्राइज।

0: चलती है क्या 9 से 12? इतने सारे कॉल्स आए हैं, बिलीव मी इस 4 मिनट में मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है. हमारे पास एक नई आरजे है, वो भी ये कहेंगी. हेलो फर्निशर रेडियो, यू आर ऑन एयर.
1: हेलो, आई एम हियर टू आंसर द क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड ऑन द रेडियो शो.
0: हां जी हां जी, जल्दी से अपना नाम और आंसर बता दीजिए सर, क्योंकि कई सारे लोग दे चुके हैं एंड आई वांट टू एंड द गिव अवे, तो आप भी बता दीजिए, आपको भी ऐड कर दूंगी.
1: डेफिनेटली डेफिनेटली. सो मेरा नाम है वंदित शाह, और आपने बोला कि 5 में से 3 नेशनल पार्क बता दो. मैं बताऊंगा योसेमिटी नेशनल पार्क, योसेमिटी नेशनल पार्क, बिग बेन नेशनल पार्क, रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क, स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क, येलो स्टोन नेशनल पार्क. मैंने आपको 5 बता दिए,
0: बड़े सारे बता दिए आपने. बस जी नहीं, और आपने बता दिया, मेरे पास बताने के लिए कुछ बचा नहीं. बट थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. बहुत सारे जवाब आ चुके हैं. लेट्स टेक वन मोर कॉल. फर्निशर रेडियो, यू आर ऑन एयर. हाँ जी बोलिए.
2: हाँ जी, मैं, मेरा नाम पिंकी गुप्ता है, तो मैं इस कॉन्टेस्ट के लिए बताना चाहूंगी.
0: हाँ जी बोलिए. हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए, बस जल्दी से बता दीजिए. नेशनल पार्क
2: ग्रेट स्मोकी माउंटेन, जियोन नेशनल पार्क एंड येलो नेशनल पार्क, येलो स्टोन नेशनल पार्क.
0: ओके, सुनते रहिए. थैंक यू. फर्निशर रेडियो, यू आर ऑन एयर.
3: हाय, द आंसर इज येलो स्टोन नेशनल पार्क, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क एंड ग्रेट ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क एंड ग्रेट स्मोकी माउंटेन.
0: आपका नाम?

0: ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क एंड ग्रेट स्मोकी माउंटेन.
1: आपका नाम?
0: सबा.
1: ओके प्रभा, सुनते रहिए. थैंक यू
0: सबा. सबा सबा
1: सबा. ओह सबा, आपसे तो बात होती है सबा. थैंक यू. थैंक यू सो मच. यस फनिशर रेडियो, दिस इज द लास्ट कॉल फॉर दिस गिव अवे, क्योंकि आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे पास 25 लोग आ चुके हैं अभी तक आंसर्स के, इफ यू कैन बिलीव इट. आप भी बताइए जरूर. बिल्कुल, यू आर ऑन एयर.
2: हाय, आई थिंक द आंसर्स आर योसेमिटी, येलोस्टोन एंड ज़ायन नेशनल पार्क.
1: यस, एंड कैन यू टेल मी योर नेम?
2: काजोरी, KAJORI.
1: काजोरी, थैंक यू सो मच. अभी भी मेरी लाइंस ब्लिंक हो रही हैं, बट विल एंड इट बिकॉज वी आर हेडिंग इट टू अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. एंड मेरी गवाह है मेरे साथ जो आरजे हमारे साथ, एक काव्या आरजे, बड़ा प्यारा नाम है काव्या आपका. काव्या हमारे साथ, आरजे मेरे को शैडो कर रही हैं, तो यू विल बी लिसनिंग टू हर सून ऑन फनिशिया. बट फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ जो हमारी ऐप में देख रहे हैं, मेरे हाथ में कितनी सारी चिट्स हैं. आई थिंक लिटरली 25 होंगी बिकॉज आई वॉज बैक टू बैक टेकिंग योर कॉल्स एंड एवरीबडी गॉट इट राइट. सो लेट मी क्विकली, मैं काव्या को ये मौका देती हूँ. काव्या जी, आप एक इसमें से पिक कर लीजिए कोई सा भी. लेट्स सी हु इज द लकी विनर. ओके लेट्स सी, एंड दैट इज ईशा. ईशा, यू आर द लकी विनर. सो ईशा, प्लीज आप मुझे कॉल करिए इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स, 9722355555, सो आई कैन गेट योर डिटेल्स. एंड यस, एवरीबडी गॉट इट राइट. द टॉप नंबर वन कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, कल्चरल इम्पैक्ट, आइकॉनिक सीनरी, इवन जो मोस्ट फेमस जिसको कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल रिकॉग्निशन, एनुअल विजिटर्स, इज एक्चुअली येलो स्टोन नेशनल पार्क. पिछले साल में येलो स्टोन गई थी. ग्रैंड कैनियन, आई हैव बीन देयर ट्वाइस. आई होप यू हैव. ग्रैंड कैनियन इज सो ब्यूटिफुल, दैट इज नंबर टू. नंबर थ्री इज योसेमिटी. योसेमिटी भी फॉर्चुनेटली मैं गई हुई हूँ. और नंबर फोर इज ग्रेट स्मोकी, जहां मैं जाने वाली हूँ 3 हफ्ते में. एंड आई एब्सोल्युटली लव दीज नेशनल पार्क, और भी बहुत सारे हैं. ज़ायन इज नंबर 5. सो देर आर अ लॉट ऑफ नेशनल पार्क, बट वक्त हमारे पास कम है. सो वे एम गोइंग टू प्ले अ शॉर्ट, छोटा सा गाना चलेगा, एंड देन वी विल बी हेडिंग इट टू अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. सुनते रहिए फनिशर रेडियो, पार इन द हाउस.

0: You turned down that job to become a diving instructor.
1: Yeah, I thought Ma would say no.
0: And?
1: She said, build your life the way you dream it.
2: For every mother who chooses belief over fear and raises you to become your best self. From Tanishq, this Mother's Day, enjoy up to 20% off on diamond value and on gold jewelry making charges. Also, 0% deduction on exchange of old gold above 18 carat. Celebrate her at Tanishq, 2809 Preston Road, suite number 1200 Frisco. Tanishq, a Tata product. Raised you to become. Conditions apply.
3: Yaar, business chalana din ba din mehenga hota ja raha hai. Har taraf bas expenses hi expenses.
4: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
3: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
4: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
3: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे।
4: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
3: नंबर बोल जल्दी।
4: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट कनेक्टिंग अमेरिका financials.com.
5: Connecting America, jahan smart business owners turn costs into cash.
6: O haseena zulfon wale jaane jahan.
7: Zulfein sirf hawa mein nahi, style mein bhi udni chahiye. Bollywood style layers ho, soft curls ho, ya complete hair makeover. Amreen Salon gives you that perfect hairstyle, jo aapki personality ko kare highlight. Because great hair doesn't just change your look, it changes your confidence. Mention Fun Asia and get 10% off on your hairstyle service. Call Amreen at 214-909-6601.
8: Or visit their Instagram, Amreen Salon, located at Allen and Frisco.

0: In Salon. Style that moves with you.
1: Inefficient man.
2: Very complex.
3: Clumsy way.
4: Are confusion hi confusion hai. Abhe!
1: Disjointed software को यूज करना इतना इजी नहीं जितना आप समझ रहे हैं टूटे फूटे सॉफ्टवेयर से छुटकारा पाओ अपने बिजनेस के लिए Zoho One ले आओ Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेकर customer support, accounting, operations या HR. Common एक software एक Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर jagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
7: इमिग्रेशन पेपर वर्क से परेशान अब टेंशन छोड़िए easypetition.com के साथ USCIS पेटिशन फाइल करना हुआ इजी आप खुद इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर और फाइल कर सकते हैं पेटिशंस लाइक F1 या B1 चेंज ऑफ स्टेटस F1 OPT H4 विद EAD I-485 और I-485J N400 नेचुरलाइजेशन और 200 से भी ज्यादा पेटिशन टाइप्स और प्राइसिंग सिर्फ $30 तो आज ही जाइए easypetition.com पर easypetition.com
8: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Phanesha Radio.

0: वेलकम बैक. घड़ी में हुए हैं 6:24 और ईशा कुलकर्णी है विनर हमारी रेडियो रेड हॉट चिली पेपर की एंड गिव अवे की. एंड आई वांट टू से क्योंकि वक्त बहुत कम था एंड सिंस आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स एट दैट टाइम, जैसे मैंने कहा अराउंड 25 पीपल पार्टिसिपेटेड, इतने सारे लोग में आई विश आई कुड टेल द नेम, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया एंड आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट दैट. लेकिन आई थिंक 3-4 मिनट और चाहिए होंगे हमें सारे नाम गिनाने के लिए, सो आई स्किप दैट. बट आई डू want to say that I really appreciate that jo aap logo participate kiya and everybody got it right. It is National Tourism Day and hum baat kar rahe the ek ek keh sakte sawal pucha tha maine ki kaun se top 3 that you can mention and top 3 means like in anywhere in the top 5 or top 6 7 like jo bhi top wale hain bas unke se teen naam bata dijiye Isha and then I had to do the kyunki itne sare logon ne sahi jawab diye around 25 everybody got it right really then I did a raffle एंड और हमारी नई जो आरजी आई है काव्या, उन्होंने पिक किया एंड इट इज ईशा. सो ईशा कुलकर्णी जी, आपको मैं शायद नहीं बता पाई या आई डोंट नो आपने सुना कि नहीं, विद इन 48 आवर्स यू कैन गो टू एनी ऑफ द रेड हॉट चिली पेपर प्लेस एंड यू विल गेट द गिव अवे. द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फ्रिस्को में ये लागू नहीं है, डोंट गो टू द फ्रिस्को लोकेशन बट एनी ऑफ द 3 लोकेशंस टू अवेल दिस ऑफर. फिर से बताना चाहती हूँ जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था लेकिन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है और उन्होंने शायद ना सुना हो क्योंकि वो नहीं थे पहले हमारे साथ, ये रेडियो संगम. जी हाँ, हमारा एक साल हमारा रेडियो जो तेलुगु रेडियो स्टेशन है, वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट टर्न्ड 1. इट इज नॉट जस्ट अ स्टेशन, इट इज अ ग्लोबल सेंसेशन. इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मोस्ट लव्ड तेलुगु रेडियो इन द वर्ल्ड एंड इट इज रीडिफाइनिंग व्हाट रेडियो ट्रूली मीन्स. और एक चीज और बताना चाहती हूँ बिकॉज दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस और आई मेंशन दिस कि मेरी कुछ फैमिली मेंबर्स तेलुगु हैं एंड आंध्र के हैं and I have a lot of friends in Dallas, maybe some of them are listening as well to me that are from Hyderabad or you know Telangana or Andhra, they're Telugu, they speak Telugu and they tell me that how much they love Radio Sangam. Matlab Radio Sangam is a very beloved radio station of hamara jo Dallas Puram ka bahut sare hamare Dallas ke Telugu ya to unki native language hai ya Telugu samajhte hain, jaise mujhe bhi Telugu samajh aati hai to main bhi sunti hu Radio Sangam, to jinko Telugu mujhe thodi thodi samajh aati hai, बहुत कम कम, लेकिन जिनको समझ आती है जो सुनते हैं और जो हमारे बहुत सारे तेलुगु स्पीकर्स हैं, दे ऑल लव इट. सो यस, इट इज अ मोमेंट ऑफ प्राइड एंड सेलिब्रेशन फॉर ऑल ऑफ अस. फनीशा रेडियो, यू आर ऑन एयर.
1: हाय बारो, हाउ आर यू?
0: आई एम गुड. कौन सा गाना सुनेंगे सर, नाम क्या है आपका?
1: हसन, वो है ना, क्या बोलते हैं, रमैया वस्तवैया.
0: अरे इतना पुराना गाना, वो राज कपूर वाला कह रहे हैं क्या?
1: जी.
0: अच्छा चलिए मैं देखती हूँ उसका कोई रीमिक्स मिलता है. बहुत ही अच्छा गाना है लेकिन काफी पुराना धुराना गाना है, तो आई हैव टू सर्च फॉर सम रीमिक्स.
1: ओल्ड गोल्ड
0: है वो, तो अलग बात है. हम घर में मैं बहुत सुनती हूँ, मैं एक्चुअली राज कपूर की फिल्में भी देखती हूँ. बट यस, आई विल प्ले समथिंग दैट फिट्स द मूड ऑफ थर्सडे इवनिंग. हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. चलिए मैं एक ऐसा बढ़िया सा, क्योंकि गाना मुझे बहुत पसंद है और इसके इतने सारे अच्छे अच्छे रिमिक्स आए हुए हैं, तो मैं एक बढ़िया सा रिमिक्स, कड़क वाला रिमिक्स, और कड़क की बात करती हूँ तो आई रियली होप कि आप लोगों ने कड़क चाय पी ली हो शाम की. मैं तो यहां पर आ रही थी तो मैं अपनी कड़क वाली चाय यूजली मैं इस टाइम पे पीती हूँ बिफोर आई स्टार्ट माई 7 PM शो, लेकिन चूंकि मुझे पता था कि मैं रेडियो पर होंगी, मैं पहले से ही एकदम अदरक वाली कड़क चाय पीकर आ रही हूँ. आई होप आप लोगों ने भी अपनी शाम की बढ़िया सी चाय कॉफी जो भी आप पीते हैं पी ली हो.

हसन साहब, बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं और इतने सारे रीमिक्स मिल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये अच्छे अच्छे बहुत बढ़िया रीमिक्स है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है रीमिक्स का, दैट दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वाइब. क्योंकि श्री 420 का गाना है तो एकदम 420 अच्छा होना चाहिए और वैसा नहीं मुझे मिल रहा है. मुझे बहुत अलग अलग, किसी ने उसको अलग अलग तरीके से सॉफ्ट गाया, ये गाया, तो लेट मी कीप लुकिंग फॉर समथिंग दैट इज सो परफेक्ट कि वो लगे कि बिल्कुल ये तो ओरिजिनल वाला फ्लेवर आ गया और एकदम मॉडर्न वाला म्यूजिक में आ गया, बट इट रियली फिट्स दैट. सो मैं करती रहूंगी कोशिश. फिलहाल लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग.

0: म्हणजे काय? ए मेंडोलिन, चल चालू कर ना.
1: This part of the show is brought to you by Grehe Pravesh. GrehePravesh.com brings you the India Property Expo happening on May 9th and May 10th at the beautiful Hyatt Regency Frisco in Dallas. Aur aaj hai May 7th, toh ye May 9th aur May 10th, yani kisi weekend ho raha hai, and you can meet top builders from cities like Hyderabad, Bengaluru, Mumbai, Chennai, Pune and Delhi NCR, showcasing over 200 premium projects from luxury apartments and villas to plots and farmlands. Whether you are looking for a ready-to-move-in homes or exciting new launches, enjoy exclusive expo-only deals designed just for you. Don't just dream it, own it. Register now at grehepravesh.com and take the first step towards your dream home in India. Main badi khushi ke saath ye batane ja rahi hoon ki Hasan saab mujhe ek gana mila itne saare remixes dhoondne ke baad jo mujhe pasand aaya aur mujhe lagta hai aapko bhi pasand aayega, because wo kaafi original hi hai, usme sirf thoda sa music alag hai. And with that, I also want to mention something, kyunki abhi meri baat hui Iqbal saab se, Nadeem Iqbal साहब ने कॉल किया और उन्होंने कहा उन्होंने कोई गाना नहीं रिक्वेस्ट करा और उन्होंने कहा कि वो रेडियो सुनते नहीं हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इकबाल साहब अब आप सुनेंगे, क्योंकि अचानक से उन्होंने सुना और उन्होंने कहा आपका नाम क्या है, क्योंकि वो नहीं जानते. मैं 6 साल से हूं रेडियो पर, 6 साल से ऊपर हो गए हैं मुझे फनीशा पर, बट हो सकता है वो नहीं जानते हूं क्योंकि वो नहीं सुनते. तो मैंने उन्हें बताया, वैसे शायद मैंने नहीं बताया मेरा नाम पारो है इकबाल साहब, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी आवाज बहुत अच्छी लगी और उन्होंने मेरे लिए एक शेर बोला जो मुझे बहुत अच्छा लगा. जी हाँ. और उन्होंने कहा कि हमें शिकवा है तुमसे. देखिए मुझे अपनी हैंड राइटिंग नहीं पढ़ पा रही हूँ. हमें शिकवा है खुदा से. क्या ज़रूरत थी, आई थिंक थोड़ा सा मैं इसमें से वर्ड इधर उधर हिला रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी लिखा जब आप बोल रहे थे. हमें शिकवा है खुदा से. क्या ज़रूरत थी इतनी अच्छी आवाज़ बनाने की. अरे वाह वाह वाह, मुझे लगता है आप शायरी करते हैं इकबाल साहब. हमें सुनते रहा करिए और कॉल करते रहिए करिए. आज तो मैं मार्विन साहब को कवर कर रही हूँ, वरना मैं 7 से 9 आती हूँ मंडे थ्रू थर्सडे. अगर आप कोई और शेर सुनाएंगे मेरे ऊपर, नहीं किसी के ऊपर भी अगर आप शेर सुनाएंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत बढ़िया शायरी करते हैं, लिखते हैं. एंड विद दैट हसन साहब, ये आपका गाना. एंड विद that we will be heading into a short commercial break. Lautenge yahin par, only on 104.9 FM. Paro in the house.

हेलो एंड वेलकम. थोड़ा सा वक्त बचा है हमारे पास एंड वी आर गोना डू अनदर गिव अवे. जी हाँ, बिल्कुल, एक गिव अवे किया है और एक की और बात करेंगे. लेकिन उसके पहले बताना चाहती हूँ आपको अबाउट पेज थ्री ईटरी. एंड आई एट देयर प्रीटी रिसेंटली एंड आई एब्सोल्युटली लव द फूड. अगर आपको अच्छी वाली चाट पसंद है, मतलब बढ़िया चाट जिसको कहते हैं ना, और चाट में तो बहुत सारे आइटम्स आते हैं, बट आई लाइक टू थिंक चाट एज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू मी. हमारे दिल्ली में बड़ी हुई हूँ तो दिल्ली हमारी बड़ी चटोरी सिटी है. दिल्ली के लोग भी बड़े चटोरे होते हैं. सो वी लव गुड चाट, चाहे वो आलू टिक्की चाट हो या उसी तरह की कोई और चाट हो. पेज थ्री ईटरी के बारे में बताना चाहती हूँ. ब्रेकिंग न्यूज इज नाउ ऑन पेज थ्री. डालस हैज गॉट अ न्यू फ्लेवर एट हब 121. पेज थ्री ईटरी वेयर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेयर. कबाब, चाट, फ्यूजन बाइट्स एंड मॉकटेल्स. वाइब्रेंट वाइब्स फॉर ब्रंच, लंच और डिनर. परफेक्ट फॉर फूडीज, डेट्स एंड फ्लेवर चीजर्स. आप विजिट कर सकते हैं page3eatery.com फॉर फर्दर डिटेल्स. अगर आप इफ यू ग्रो अप इन अ सिटी वेयर चाट वॉज बिग, जैसे कि दिल्ली है या और भी बहुत सारे ऐसे शहर है जहां चाट मतलब जहां की बहुत फेमस है, आई एम श्योर यू विल लव पेज थ्री. एंड इफ यू डिडंट ग्रो अप ईटिंग एक्सीलेंट चाट, देन व्हाई आर यू वेटिंग? यू नीड टू गो टू पेज थ्री ईटरी. अब लेट मी टेल यू द क्वेश्चंस. यस, विच इज अबाउट पेज थ्री एंड सॉकर लीग. सो लव सॉकर, देन Here's something exciting just for you. McKinney Chupacabras FC is kicking off their home opener this May 16. And guess what? Page 3 Eatery along with Funisha Radio is giving you a chance to be there live. We are giving away 2 free tickets to lucky listeners. So you and your plus one can enjoy an action-packed game right here in DFW. Stay tuned, answer a simple fun question and you could be our next winner. Page 3 Eatery and Funisha bringing the game closer to you. अब मैं गाना चलाना चाहती हूँ आप लोगों के लिए. बहुत ही फेमस गाना है. दिस इज एक्चुअली अ रीमिक्स. आपको मुझे ये बताना है ये देखिए बड़ा टेढ़ा सा सवाल है क्योंकि मुझे लगता है इस गाने से रिलेटेड मैं कोई भी सवाल पूछूंगी बहुत सुपर डुपर इजी होगा. ये तो किंडर गार्डन वाला आंसर क्वेश्चन होगा और आपको लगेगा ये क्या पूछा पारो ने. हम तो डैलस के इतने स्मार्ट लिसनर्स हैं, हमारे लिए कुछ थोड़ा सा तो मुश्किल होना चाहिए. ये भी वैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जो गाना है ओरिजिनल एक श्रीदेवी की फिल्म में था. उस फिल्म के विलन का जो नाम था उस फिल्म में बहुत फेमस था और वो एक डायलॉग भी बहुत फेमस था. बस इतने ही हिंट ही काफी है. जैसे आप ये गाना सुनेंगे आप वो फिल्म की बात याद करेंगे और उस फिल्म के साथ आपको याद आ जाएगा कि हु इज द विलन एंड उनका क्या डायलॉग है. आई नीड द नेम ऑफ द विलन एंड हिज फेमस डायलॉग. तीन ही वर्ड का डायलॉग है.

0: फनी शो रेडियो. अच्छा, हमारे कुछ कॉल ड्रॉप्स हो गए लेकिन अभी आ गया फनी शो रेडियो. यू आर ऑन एयर.
1: हाय पारो.
0: हाय
1: ज्योति. द आंसर इज लेट अमरीश पुरी जी एंड हिज डायलॉग इज मोगैम्बो खुशवा.
0: एब्सोल्युटली राइट. विनर मुझे मिल गया बट थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग.
1: ओके
0: ओके
1: बाय.
0: श्योर थैंक यू. फनिशर रेडियो. हेलो
2: हेलो.
0: हाँ जी फनिशर रेडियो.
2: हाँ जी करण बोल रहा हूँ.
0: हाँ जी. हाँ जी बोलिए करण जी.
2: हाँ जी. विलन का नाम पूछ रहे थे आप.
0: हाँ जी.
2: अमरीश पुरी.
0: हाँ विनर मुझे मिल गया बट यस मुगैम्बो खुश हो गया.
2: मुगैम्बो
0: यस. थैंक यू सो मच. हेलो फनिशर रेडियो.
3: हेलो.
0: हाँ जी.
3: फिल्म के विलेन थे अमरीश पुरी एंड डायलॉग था मोगैम्बो खुशवा.
0: एब्सोल्युटली राइट. फनिशर रेडियो. यू आर ऑन ईयर.
4: हेलो. आई एम हियर टू आंसर द क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड.
0: हाँ जी बोलिए.
4: सो द मूवी इज मिस्टर इंडिया और उसका विलन था अमरीश पुरी. विलन का नाम उसमें था मोगैम्बो और डायलॉग था मोगैम्बो खुश हुआ.
0: एब्सोल्युटली राइट सर. नाम क्या है आपका.
4: वंदित शाह.
0: वंदित शाह. वंदित शाह विनर मुझे मिल गया. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. फनिशर रेडियो. यू आर ऑन एयर.
5: मोगैम्बो खुश हुआ.
0: अरे वाह वाह. मोगैम्बो खुश हुआ.
5: मोगैम्बो का कॉल लग गया. मोगैम्बो खुश हो गया.
0: वैसे आज जो है अभी एक दूसरे मोगैम्बो दूसरे विनर पहले हमें मिल गए हैं तो द फर्स्ट पर्सन टू गिव द राइट आंसर बट थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. आपका स्टाइल मुझे अच्छा लगा वैसे. फनिशर रेडियो. यू आर ऑन एयर.
6: हाँ यस. हाँ आवाज आ रही है.
0: हाँ जी बिल्कुल आ रही है.
6: आपका नंबर काफी बिजी आ रहा था बट एनीवे मोगैम्बो खुश हुआ.
0: बिल्कुल जी. मोगैम्बो जरूर खुश हुआ. थैंक यू सो मच. विनर मुझे मिल गया. और मेरा कॉल इसलिए ऐसे आ रहा था क्योंकि सारी लाइट्स जल रही थी और जो जो मेरे पास पहले आ रही थी ऑर्डर में मैं उनको ले रही थी तो यस थोड़ा हो जाता है बट थैंक यू सो मच. फनिशर रेडियो. यू आर ऑन ईयर.
7: हेलो.
0: हाँ जी फनिशर रेडियो. यू आर ऑन ईयर.
7: Oh, I called the wrong number. Sorry.
0: अरे रॉन्ग नंबर. फनिशा में कैसे रॉन्ग नंबर हो सकता है. ये तो राइट नंबर ही होगा सर. कोई बात नहीं फिर से कॉल कर लीजिए. एंड यस मोगैम्बो खुश हुआ. कैसे खुश हुआ. लेट्स लिसन इन हिज ओन वॉइस.
8: मोगैम्बो खुश हुआ.
0: मोगैम्बो खुश हुआ. और एक और चीज बताना चाहती हूँ. अमरीश पुरी साहब की जो आंखें बाहर इतनी बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है और इतनी बाहर आती है दैट इज सो इंटरेस्टिंग. अमरीश पुरी साहब की तो मैं थोड़ी सी बात करूंगी लेकिन वक्त कम है और हमारा ये छोटा सा जो मार्विन साहब का शो कर रही थी मैं तो ये छोटा सा प्यारा सा हमारा जो सेगमेंट है दैट इज कमिंग टू एन एंड. सो लेट्स लिसन टू अ सॉन्ग जिसमें अमरीश पुरी साहब भी हैं. कुछ ही गानों में होते हैं वो. ज्यादा तो साइड में ही होते हैं. But let's listen to this and then we will talk a little bit more. And बताना चाहती हूँ संजय कुमार साहब नहीं first person to give the right answer. सबने जिन्होंने भी call किया बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी है जिन्होंने भी call किया everybody got it right. मोगैम्बो खुश हुआ. और मैं कहूंगी बिकॉज सो मेनी पार्टिसिपेशन आई एम गेटिंग इतनी ज्यादा आप लोग इतनी अच्छी प्यारी प्यारी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं कि पारो खुश हुई.